ऐसे ही तो करते करते थर्सडे भी आ गया एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज टुडे इज थर्सडे और मेरा तो ये आखिरी दिन है इस हफ्ते का यहाँ पे, क्योंकि मुझे छुट्टी मिलने वाली है, थोड़ी सी लंबी छुट्टी मिलेगी ऑल द वे अंटिल मंडे जब मैं आपसे मिलूंगी. लेकिन डोंट वरी, अभी के लिए तो मैं यहीं पे हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर. तो गाइज, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड, लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट द शो ऑन द. आई होप यू आर हैविंग ए वंडरफुल थर्सडे. इस वीकेंड आने वाला है, दैट इज़ टुमारो इज़ फ्राइडे एंड देन द वीकेंड. आई होप आपने अपने वीकेंड के प्लान्स बना लिए हैं. नहीं बनाए हैं तो बहुत सारे प्लान्स बना लो, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है अराउंड द सिटी. सम वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट्स गोना हैपन दिस वीकेंड इज एक्चुअली द टेक्सास स्टेट फेयर. सो इन केस यू हैव नेवर बिन, देन यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट. इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग. आई थिंक आई एम गोना गो टुमारो, बट अदर देन दैट गाइज, लेट अस गेट द शो ऑन द रोड टुडे. बाय द वे, आज ही मैंने एक वीडियो देखी कि अपेरेंटली द हाउसिंग मार्केट इज स्टार्टिंग टू क्रैश इन DFW बिकॉज पीपल आर अबैंडनिंग द मॉर्गेजेस एंड रनिंग बैक टू इंडिया. स्पेशली क्योंकि अ लॉट ऑफ द बायर्स इन द DFW एरिया वर पीपल हु वर H1B वर्कर्स एंड टेक वर्कर्स, एंड बिकॉज ऑफ द न्यू रूलिंग एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द कंट्री विच इज काइंड ऑफ वॉलेटाइल राइट नाउ, people are just kind of like leaving after layoffs and things like that. So if you are looking to buy, this might be the time because the prices are actually low, they are falling. Therefore just reach out to Dream Home Mortgage because your dream home may be closer than you think. Since 1998 they have helped families across the country with personalized mortgage solution for buying or refinancing. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com. Especially if you're planning to buy in that Salina, Aubrey, Prosper, that area, I know prices have really gone down for properties in that area. It's all over my feed. So if you're looking to buy, then and you have the money and the resources, definitely reach out to Dream Home Mortgage and they can help you out, you know, for all you know. So guys, let's get the show on the road. और ये वाला साथ में गाते हैं नेक्स्ट सॉन्ग.

भाई जुम्मे की रात तो कल है, आज तो हम थर्सडे मना रहे हैं। थर्सडे का मतलब बृहस्पति। भाई बृहस्पति पैसों वाला प्लैनेट है ना? आई मीन आई एम नॉट रियली 100% श्योर, बट दैट इज व्हाट आई थिंक, इजंट इट? सब बोलते नहीं अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करो, इजंट दैट बृहस्पति? और क्या है, मुझे इतना नहीं डिटेल नहीं पता गाइज। अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे बताइए, और अगर नहीं पता है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मैं गूगल कर लूँगी। तो भाई लोगों, अरे सॉरी, मेरा अलार्म बज गया, पता है क्यों? क्योंकि नहीं तो मैं भूल जाती हूँ ये चीज़ें आप सबको बताना। यस फ्रेंड्स, आई एम परफॉर्मिंग विथ माई बैंड एंड ऑफ दिस मंथ ऑन अक्टूबर 30th एट स्टीव्स वाइन बार एट 7 PM। सो यू कैन वॉच मी एंड माई बैंड, एंड वी आर फीचरिंग सम गेस्ट वोकलिस्ट ऑल्सो दिस टाइम। तो डेफिनेटली कम अलॉन्ग फॉर द शो। देर आर नो एंट्री टिकट्स और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स अ फ्री इवेंट। हाउ एवर देर इज अ कवर चार्ज विच गोज डायरेक्टली टू द बैंड। इफ यू ऑर्डर ड्रिंक्स, दे ऑटोमेटिकली एड इट टू योर बिल। इट्स अ ब्यूटिफुल वेन्यू। दे हैव सिलेक्शन ऑफ वाइन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैरन एंड स्टीव, जिनका बार है, दे एक्चुअली ट्रैवल टू इटली टू स्पेशली सोर्स really good quality wines from Europe and all over America as well. So definitely come out. It's at Steve's Wine Bar, 7 PM on October 30th. And you can see my band, the Dallas Bollywood Project, and me playing lots of amazing, amazing songs. And this is a sing-along event, which means if you want to join in and sing from your spots and your chairs and your tables, then absolutely you can totally do that. We'll give you the lyrics sheet. There's a QR code. It's going to be so, so, so fun. So guys, aage badhte hue, today I have something really nice to share with you. Today hum log, instead of me giving you gyan, which I normally do give about pyar, mohabbat and relationships and all of those things, today I thought I'll change it up a little bit. I'm not going to give you gyan today. I thought I'll share some relationship stories with you, and we can open the floor up for discussion and conversation. What you think about it, what you have to say, or if you have any opinions regarding that story. So we're going to do all of that after our two giveaways, which are going to be at around 7:50 and 8 o'clock. So stick around. There's going to be lots of fun. And just shut up and bounce in your seats.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया।
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया।
4: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
14: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
15: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के.
14: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
15: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
16: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos.

हेलो दोस्तों, वी आर बैक. यस यस यस, दिस इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो एन इवनिंग इन डैलस ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम. तो गाइस, आपको वो वाला गाना याद है ना, ए मेरे दिल तू गाए जाए. तो याद है ना आपको मूवी का प्लॉट, उसमें उसका ओरिजिनल बॉयफ्रेंड यू नो डाइज एक्सीडेंटली, यू नो, एंड देन शी ट्रेवल्स सात समुंदर पार एक दूसरे देश में, और उसको अपने बॉयफ्रेंड जैसा ही एक और बंदा मिल जाता है, उससे भी प्यार हो जाता है. लाइक हाउ लकी वॉज अमीषा पटेल इन द मूवी. एंड मतलब उसकी किस्मत तो ऑलमोस्ट सलमान खान की किस्मत जैसे लकी है, क्योंकि एवरी टाइम सलमान खान ब्रेक्स अप विथ वन ऑफ हिज लव इंटरेस्ट, ही फाइंड्स अनदर गर्ल हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक हर. सेम जब वेन ही ब्रोकअप विद ऐश्वर्या राय, ही फाउंड वॉट्स दैट स्नेहा उल्लाल. एंड वेन ही ब्रोकअप विद कटरीना कैफ, देर वॉज दैट अनदर एक्ट्रेस हु लुक्ड एग्जैक्टली लाइक कटरीना कैफ. एंड ही डिड मूवीज विद द बोथ ऑफ देम. यू नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट. कोई बात नहीं गाइज, आई थिंक ही प्रॉबली बेस्ड ऑफ हिज लाइफ प्लॉट ऑन दिस मूवीज प्लॉट. वॉट डू यू थिंक? तो गाइज, आगे बढ़ते हुए, टोटली अनरिलेटेड टू दिस बाय द वे, इफ यू आर लुकिंग फॉर टैक्स एडवाइस, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर इज ऑलमोस्ट हियर, वी आर इन अक्टूबर, ओनली 3 months लेफ्ट अंटिल जनवरी, एंड देन फोर्थ क्वार्टर टैक्सेज विल बी ड्यू. एंड इफ यू स्टिल हैवंट डन योर क्वार्टरली टैक्सेज, और यू डोंट हैव अ टैक्स स्ट्रैटेजी, एंड यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और सम काइंड ऑफ अ बिजनेस ओनर और समथिंग, एंड यू आर लुकिंग फॉर हेल्प विद टैक्स, अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintax.com टूडे. येस. एंड अनदर फन फैक्ट, 11 तारीख को, विच इज दिस संडे, अक्टूबर 11th को 11 बजे, 11:11 पे आपको देर इज गोइंग टू बी अ फ्री वेबिनार अबाउट टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ईयर एंड टैक्स स्ट्रैटेजीज विद अनिल गांधी. ही इज द मेन गाय फॉर एजी फिनटेक्स, अनिल गांधी फिनटेक्स, दैट्स हाउ एजी फिनटेक्स, उसका नाम भी वैसे ही है. मेरे को अभी रियलाइज हुआ बाय द वे, मैं पिछले 3 महीने से एजी फिनटेक्स के एड्स बोल रही हूँ, एंड आई जस्ट रियलाइज एजी फिनटेक्स स्टैंड्स फॉर अनिल गांधी फिनटेक्स. OMG. Register today at agfintax.com and secure your spot for the free webinar, because free information is always amazing, right? We are doing a little bit of a nostalgia train today. I don't know, I just feel like listening to these old songs, so we're gonna play, but they're all like super energetic, so I hope you're bouncing up and down in your chairs.

0: without further ado, let's go ahead and play our game. Yes, भाई आज का giveaway क्या है? आज का giveaway हमारे पास एक नहीं दो दो giveaway है. Just like the rest of this week, आज का पहला giveaway is from Indian Ethnic Wear by Jyotika Patel. Yes, come celebrate Navratri with a fabulous, fabulous new look. For every night, explore a stunning collection of stylish contemporary and chaniya cholis along with customizable wedding and bridal wear for men, women at Indian Attire, Indian Ethnic Wear by Jyotika Patel in Irving. So, bhai, agar aap Irving mein hain ya phir nahi bhi hain, then definitely check out Jyotika Patel in Irving. Call 945-444-2194 or visit Jyotika Patel Designs. भाई नवरात्र के टाइम पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कैसे चलेगा? वही तो हमारा मौका होता है. एग्जैक्टली. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए लेट्स गो अहेड एंड प्ले द गेम. तो क्या आप जीत सकते हैं? आप जीत सकते हैं बाय आंसरिंग दिस वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू कैन विन अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स फ्रॉम ज्योतिका पटेल डिजाइन. अगर आप क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स रिमेंबर दिस स्टोर इज लोकेटेड इन वैली रैंच इन इरविंग. एंड या लेट्स गो अहेड एंड प्ले दिस. तो माय नंबर इज 9722355555. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. मैं एक गाने का बिगिनिंग बजाऊंगी, उसका जो इंट्रोडक्शन का जो म्यूजिक है ना, मैं सिर्फ वही बजाऊंगी आपके लिए. एंड देन यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द सॉन्ग. Okay, it's very easy. It's very, very easy. It's so popular and you're not going to miss it. So, let's go ahead and play this game. So, gaana acche se suniye iska introduction. Jiski call pehle lagegi, prize usi ko milega. Theek hai? Here we go. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. And we have our first caller. अरे गाना तो बज गया. Okay. Hi, can you hear me?
1: Hello.
0: Hi, can you hear me? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hi, can you hear me?
2: Yeah, hi. Yes, I can hear you.
0: Okay. First, tell me your name and then tell me the correct answer.
2: Yeah, hi. My name is Prayas and.
0: वेरी गुड. वो मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो शुरू का गाना बज भी गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं. एज प्रोमिस्ड आपने पहला कॉल किया है एंड यू हैव वन द गिव अवे. सब एवरीबडी जोर से तालियां से. या
2: मुझे मुझे एक्चुअली गाना सुनाया नहीं गया था क्योंकि हमने रेडियो टावर बंद कर दिया.
0: नहीं, वो गाना थोड़ा सा चल गया था जब तक मैंने कॉल उठाई ना, तब तक गाना चल गया था. बट कोई बात नहीं, यू वर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली कनेक्ट. सो यू हैव वन द ब्यूटिफुल पेयर ऑफ इयररिंग्स फ्रॉम ज्योतिका पटेल डिजाइन. आई होप यू हैव अ लेडी फ्रेंड और समवन इन योर लाइफ टू गिव दोज इयररिंग्स टू.
2: She's just beside me, so she's happy.
0: Great. Well, congratulations to the both of you.
2: Thank you.
0: Of course. So guys, प्रयास जस्ट स्टे ऑन द लाइन. मैं ये गाना बजाती हूँ एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू गो एंड रिडीम इट. ओके
2: श्योर. थैंक यू.
0: ओके गाइस, सिंस हमने ये गाना बजाया, आप यही गाना सुनिए एंड एंजॉय.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
8: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
3: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
8: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
9: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सास।
10: हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 3 PM टू 7 PM।
9: बिरिस्ता हाउस, रिचनेस ऑफ बिरयानी ब्लिस।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: फ्लोर्स क्लीन
14: चेक,
3: विंडोज क्लीन
14: चेक,
3: किचन क्लीन
14: चेक,
3: एयर डक्स क्लीन।
14: वेट, एयर डक्स भी क्लीन करना होता है?
15: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
16: 5 se 8 straight from the heart. Kal hindi bol.
17: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
10: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
16: Phone uthaye, number dabaye.
17: 347-449-4242.
15: Har mohabbat ki awaaz. The one and only living legend, Rahat Fateh Ali Khan.
18: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fatehi Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan, ek hi stage par.
15: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
18: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
15: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
19: Jag ghumeya thare jaisa na koi.
20: Hello everyone. Yes, this is Ibi the Hippie only on Fun Asia Radio 104.9 FM. और आप शो सुन रहे हैं मेरा शो An Evening in Dallas. भाई इवनिंग बोलते बोलते नाइट हो जाती है, कब पता जो अंधेरा हो जाता है. आजकल तो पता भी नहीं चलता है क्योंकि फॉल वेदर इज हियर, रिमेंबर. तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो into our second giveaway. Our second giveaway for today is from Chandigarh Bites. Okay. By the way, जिनको नहीं पता, they have a special थाली from Monday to Friday with exciting dishes जो daily rotate होती है and they are located right off of McDermott Drive. You can visit chandigarhbite.com for detail. तो let's play this game. तो क्या जीत सकते हैं आप? आप जीत सकते हैं $10 का gift card from a total bill of $50 or more, which means you have to have a dine-in bill of $50. And then you can claim $10 off in case you win this giveaway. तो गाना बहुत सिंपल है, गेम बहुत सिंपल है. गाना मैं बजाऊंगी आपके लिए, आपको वो गाना सुनना है और सुन के आपको मुझे क्या बोलते हैं उसी से रिलेटेड एक गाना बजाना पड़ेगा या गाना पड़ेगा. ओके तो सिंपल मतलब वर्ड अंताक्षरी है, हम खेल चुके हैं पहले, आपको पता है. लेट्स सी, आप फोन नंबर इज 9722355555. पहले ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आई एम गोना प्ले सम रिक्वेस्ट्स फॉर यू गाइस, लेकिन फर्स्ट आर गिव अवे. तो आर यू रेडी? नंबर डायल करके रेडी रहना भाई, गाना आ रहा है.

0: कहूँ।
1: चलो हमारी कॉल आ रही है, सो आई विल टेक दैट फर्स्ट कॉल। हाय, कैन यू हियर मी?
2: यस, हेलो।
1: हाय, ओके, आप ओके, फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर, और प्लीज रेडियो बैकग्राउंड में बंद कर दीजिए क्योंकि वो थोड़ा क्लैश होता है आवाज।
2: हेलो,
3: आप
1: हेलो,
3: रेडियो
1: बैकग्राउंड पर बंद
3: हेलो
1: हाय कैन यू हियर मी
3: हेलो
1: कैन यू टर्न ऑन द रेडियो इन द बैकग्राउंड प्लीज ओके वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉलर
4: हाय कैन यू हियर मी
3: हेलो
1: Hi, can you hear me? Can you please turn off the radio in the background?
4: Hello?
1: Hi, can you hear me?
4: Yes.
1: Can you please turn off the radio in the background?
4: It's turned off.
1: Okay, great. First of all, tell me your name and then sing the song that you're coming up with. Okay. No? Arey, mujhe lagta hai kisi ko gana hi nahi gana. कोई बात नहीं गाइज, द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन, तो जब सिंस द क्वेश्चन इज ओपन मैं गाना दोबारा बजा देती हूँ। रिमेंबर यू हैव टू पिक वन वर्ड फ्रॉम द सॉन्ग, फ्रॉम द मुखड़ा ऑफ द सॉन्ग एंड सिंग मी अनदर सॉन्ग फ्रॉम दैट वर्ड, दैट्स द गेम। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो डोंट कॉल अप, कॉल ओनली इफ यू नो द आंसर। ओ लुक एट दैट, लुक्स लाइक वी हैव अ कॉलर। हाय, कैन यू हियर मी?
5: Hi, this is Urvashi.
1: Hi, Urvashi. Perfect. भाई पहली कॉल किसी की कनेक्ट हुई है अभी, मतलब तीन कॉल्स के बाद। ग्रेट Urvashi. Urvashi,
5: गाना गा दो।
1: बिल्कुल गाना गा दो यार।
5: मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस इसके आगे अच्छे से नहीं आता।
1: नहीं पर वो तो सही है, गाना तो आपने सही गाया, लेकिन आपको ये गाना नहीं गाना है, आपको इससे कोई भी एक वर्ड उठा के कोई दूसरा गाना गाना है।
5: मोहब्बत बड़े काम की चीज है, वो चलेगा?
1: हाँ बिल्कुल चलेगा, और थोड़ा और गाओ, चलेगा चलेगा।
5: आपको हेल्प करना पड़ेगा, मुझे बहुत
1: कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आता उसके आगे, मुझे भी उतना ही आता है वो वाले गाने का, तो कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशंस Urvashi, यू हैव वन द गिव अवे, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ग्रेट, तो Urvashi स्टे ऑन द लाइन, आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग इन द बैकग्राउंड एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू रिडीम योर प्राइज। ओके ओके, स्टे ऑन द लाइन गाइज। Urvashi ने तो सही गाना, मतलब जो गाना मैंने बजाया था वो भी बता दिया, एंड दूसरा जो उन्होंने उससे रिलेटेड गाना बजाया था वो भी बता दिया। तो Urvashi कांग्रेचुलेशंस, आप ये गाना सुनिए, विल बी राइट बैक।

यस यस, और मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि भाई 8:14 बज चुके हैं, हमारा गिव अवेज खत्म हो चुके हैं, तो इन केस यू हैव अ रिक्वेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, डू कॉल अप. अभी तो मैं दो रिक्वेस्ट भिजाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत पहले आई थी मेरे पास, 8 बजे के पहले आई थी. तो डीजे जी, डीजे वाले बाबू, आपका लिए ये गाना, आपके लिए. ये तो मैंने बंगालियों जैसे हिंदी बोल दी, कोई बात नहीं, रूट्स कभी कभार बाहर भी आ जाती हैं. तो इंजॉय.

गाइज, दिस सॉन्ग इज अ वेरी वेरी न्यू सॉन्ग. आज ही निकला है ये, बट ऑफकोर्स दिस इज द गाना इज नॉट न्यू. द गाना इज वेरी ओल्ड, बट दिस वर्जन इज न्यू. इट वॉज शेयर टू अस बाय वन ऑफ आर लिसनर्स, ऑफकोर्स जिमरान. दिस इज द ऑफकोर्स द एवरग्रीन द मदर मस्कलंदर, बट इन अ न्यू वर्जन फीचरिंग स्टेबिन बेन प्रसन्ना सुरेश, एंड इज ब्रॉट यू बाय टी सीरीज रेकॉर्ड्स.

0: एंड गाइस इट इज 8:28 ऑन द क्लॉक. हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बाय द वे लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन इंडिया, स्पेशली विद दिस न्यू H-1B रूल दैट जस्ट वॉज अनाउंस टूडे बाय JD Vance. आई डोंट नो इफ यू सॉ इट और नॉट, बट डेफिनेटली आई वुड गो चेक इट आउट. इट्स नॉट वेरी फन. So they announced, the government announced that they are stopping PERM certification, which is basically the green card thing and the H-1B sponsorship for 8 big companies, which includes, by the way, Microsoft, Wipro, Infosys, TCS, Cognizant, Adobe, HCL, Tata and Capgemini. These are the main companies. There are some more, I think, included with that, because apparently they have let go of around 6,800 workers or something like that in the last 3 years, like local American workers, and they've only been hiring like H-1B workers, which is great for our South Asian community. However, it's bad for the people who are living here in the US. And, you know, basically the rule is, the reason they are saying is because all the labor certification is going there. So, इसीलिए अगर आप इंडिया मूव होने की सोच रहे हैं तो गृह प्रवेश के प्रॉपर्टी एक्सपो में चाहिए. बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दे हैव प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस. इट इज ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 AM टू 8 PM एट हायत रीजेंसी इन फ्रिस्को. फ्री एंड
1: डिस्कवर टैसल्स बाय रेनू इन फ्रिस्को. डिजाइनर एथनिक वेयर एट ग्रेट प्राइसेस.
2: फ्रॉम एलिगेंट साड़ीज, लहंगास टू इंडो वेस्टर्न फ्यूजन सेट्स एंड मेंस एथनिक वेयर. फाइंड फेस्टिव एंड वेडिंग स्टाइल्स
1: फॉर एक्सक्लूसिव डील्स एंड कलेक्शंस. जॉइन

0: Join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
1: Visit tassels.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
2: वेलकम टू द शादी मेमोरी टेस्ट। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। डेकोरेशंस का कलर,
3: नेक्स्ट क्वेश्चन।
2: ब्राइड की एंट्री सॉन्ग,
3: याद नहीं।
2: बफे में क्या था?
3: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
0: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 972-905-5449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेंबर।
4: बेटा, 95% आए?
5: हाँ मम्मी।
4: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
4: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
0: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट। वी हैड सो मच फन।
5: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
6: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
8: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
9: कितनी लंबी लिस्ट है?
8: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
9: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
11: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 एंट्रीज एंड गेट 1 एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
0: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
12: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
0: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
12: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
13: Jag ghume aathare jaisa na koi.
14: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.
12: Har mohabbat ki awaaz, the one and only living legend Rahat Fateh Ali Khan.
0: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
12: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
0: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
12: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
13: Jag ghume aathare jaisa na koi.
14: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

ओ यस गाइस, वी आर बैक। पता है मैंने अभी क्या किया? मैंने गाना तो बंद कर दिया और मैंने अपना माइक ऑन करना भूल गया, और मैं बातें करे जा रही हूँ वहां पे, थिंकिंग दैट यू गाइस आर ऑल लिसनिंग टू मी। कई बार क्या होता है, हो जाती है ऐसी चीजें सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो गाइज, आगे बढ़ते हुए जैसे मैं बता रही थी, इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग ऑन बाइंग योर हाउस इन इंडिया, देन डेफिनेटली गो टू द गृह प्रवेश इवेंट विच इज़ हैपनिंग ऑन 10th एंड 11th, विच इज़ दिस वीकेंड, फ्रॉम 10।

ओ यस गाइस, वी आर बैक। पता है मैंने अभी क्या किया? मैंने गाना तो बंद कर दिया और मैंने अपना माइक ऑन करना भूल गया, और मैं बातें करे जा रही हूँ वहां पे, थिंकिंग दैट यू गाइस आर ऑल लिसनिंग टू मी। कई बार क्या होता है, हो जाती है ऐसी चीजें सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो गाइज, आगे बढ़ते हुए जैसे मैं बता रही थी, इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग ऑन बाइंग योर हाउस इन इंडिया, देन डेफिनेटली गो टू द गृह प्रवेश इवेंट विच इज़ हैपनिंग ऑन 10th and 11th, विच इज़ दिस वीकेंड, फ्रॉम 10 AM to 8 PM एट हायस्ट रीजेंसी इन फ्रिस्को, बिकॉज यू कैन मीट दीज प्रॉपर्टी बिल्डर्स, बिकॉज देर इज़ गोना बी प्रॉपर्टीज़ टू इन्वेस्ट इन बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली NCR. I think it's going to be pretty good, especially with this new rule that came out today. And if you are somebody who works in the tech field and are related to any of these companies, I would say, guys, all the very best to you from our side, because I know this is a very stressful time for a lot of people. And I really hope that everything works out in your favor. And that everybody is able to live a very happy life, because हमें नहीं चाहिए कि कोई भी स्ट्रेस में रहे, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या लाइफ रिलेटेड हो, है ना? तो गाइज, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद जब गाना खत्म करके हम वापस आएंगे, देन आई विल टेल यू द स्टोरी दैट वी वर गोना टॉक अबाउट, बिकॉज आई हैव दिस अमेजिंग जूसी स्टोरी दैट आई केम अक्रॉस, एंड आई सॉ, आई रेड द स्टोरी लाइक द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वन आई वोक अप, एंड आई वॉज लाइक यार आई हैव टू से दिस ऑन द रेडियो टुडे। सो या वेट फॉर इट।

गाइस, जैसे मैं बता रही थी, आज की स्टोरी शुरू होती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ गाय एंड देयर इज अ गर्ल, लाइक ऑलवेज, यू नो, टिपिकल द यूजुअल थिंग्स. नाउ लेट मी गिव यू अ लिटिल ब्रीफ. सो टुडे आई रेड द स्टोरी अबाउट दिस 44 ईयर ओल्ड गाय हु वाज डिवोर्स्ड अबाउट अ ईयर, ईयर एंड अ हाफ अगो और समथिंग. And he has two kids, and they're both grown-up kids. One is 16-year-old girl, and the other is a 14-year-old boy. The divorce was rough. It was not the most fun. Divorces are never fun, unless you guys are extremely lit in Gen Z ki bhasha. Lit mane, aap itni enlightened hai life mein ki aapko ye sari cheeze koi effect hi nahi karti hai. Jabki वो होना बहुत ही मुश्किल है, या फिर आप इतने ज़्यादा नॉन शलांट हैं कि आपको कुछ इफेक्ट नहीं करता, वो भी बहुत मुश्किल है. तो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं. डिवोर्स वॉज रफ एज ऑलवेज, बट नाउ ही एंड हिज एक्स, दे आर काइंड ऑफ ऑन गुड टर्म्स एंड दे हैव शेयर्ड कस्टडी ऑफ देयर किड्स एंड द किड्स रोटेट बिटवीन द हाउसेज ओवर द वीकेंड्स. दैट मीन्स टू क्रिसमसेज, टू दिवालीज, सो एन एंड सो फोर्थ. ठीक है. नाउ The twist here happens because now this guy has been dating this girl and they've been actually divorced. I think unka pehle ho gaya tha, matlab 2-3 saal ho gaye, and he's been dating this 31 year old girl who's almost 14 years younger than him for about a year. So much, and they are pretty serious, so much that they also live together. Theek hai? And they've moved in together. Then one day what happens is they all, both of them, the new couple, which is this 31 year old girl and this guy, they go for a group dinner meeting some friends. So jab friends mein, you know, group dinner mein baith rahe hain, lots of other couples are there and everything, they're all talking. So ek friend dinner mein, matlab usko, us bande ko bolta hai ki bro, I think you have a type. मतलब आप एक ही तरह की लड़की को डेट कर रहे हो आजकल, सिंस योर डिवोर्स, एंड यू ऑलवेज टेंड टू डेट यंगर वुमेन. तुम हो 44, बट यू डोंट वांट टू डेट समबडी हु इज इन देयर 40s और लाइक इवन इन देयर लेट 30s. यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गर्ल्स हु आर इन देयर लेट 20s या फिर अर्ली 30s, यू नो. एंड ही सेज कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. वो ऐसे ही, मतलब इज नॉट रियली माई टाइप, इट्स जस्ट I prefer to date younger women because younger women have less emotional baggage and it's just less drama and it's so much more easier because they also have less expectations and, you know, basic unki jo so-called standards hoti hai, wo bhi thodi si utni high nahi hoti hai. The older the girls get, unke apparently demands zyada badh jate hain, aise badh jate hain, and they start overthinking about life and all of these things more. To aage kya hota hai? मैं बताऊंगी आपको इस गाने के बाद. That's right.

हाँ जी गाइस, वी आर बैक. यस यस यस, यू आर स्टिल लिसनिंग टू एपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड दिस इज माय शो एन इवनिंग इन डैलस. तो ब्रेक में जाने से, ब्रेक तो नहीं था खैर, गाने में जाने से पहले आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी अबाउट दिस गाय. इन केस यू हैव जस्ट जॉइंड इन, बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट दिस गाय हु इज अराउंड 44 years old, डिवोर्स्ड अ कपल ऑफ इयर्स अगो, रिसेंटली स्टार्टेड डेटिंग समबडी हु इज 31, और उसके बच्चे बच्चे हैं. एंड ही एंड हिज गर्लफ्रेंड आर नाउ लिविंग टुगेदर, एंड वो लोग एक ग्रुप डिनर पे जाते हैं, ही एंड हिज न्यू गर्लफ्रेंड, एंड वहां जाके दे आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट यू नो डेटिंग पैटर्न्स, अटैचमेंट स्टाइल्स वगैरह वगैरह, जो हम सारी बातें वैसे भी करते हैं ना, हम हमेशा वही करते हैं. तो वैसे ही उसके दोस्तों ने उसको पूछा ऐसे ऐसे करके, तो उसने बोला कि भाई तेरा तो टाइप है, यू डेट ओनली यंगर वुमेन. तो वो कहता है कि देखो मैं ऐसे कॉन्शियसली तो नहीं करता, बट हाँ I prefer younger women because they have less quote unquote emotional baggage and they have less demands and they're generally easy to kind of you know be with. That's why. तो उसकी girlfriend वहीं पे बैठी हुई थी पास में, ठीक है, और वो सुन रही थी. उसने उसको देखा, बड़े उसको देखते हुए उसको analyze करके उसने बोला कि is this why you are with me? Because I don't have a divorce or I don't have kids. And I'm just like 31 years old. I'm 14 years younger than you. Is this why you're actually with me? He's like, nahi, nahi, not exactly like that. But yeah, it was one of the reasons why I went out with you in the first place. So, usne fir zyada kuch socha nahi. Fir unhone ignore karke dinner khatam kiya. Fir kuch din aise hi beet gaye. Wo ghar jab aayi, she was seeming a little bit upset. Wo na soch mein pad gayi isme. वो सोच, बड़े देर से सोच रही है. अब आपको पता ही चल गया होगा, घर आके ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई, और उसमें उसने बोला कि एट होम शी आस्क्ड, सो व्हाट डू यू थिंक बैगेज इज, मतलब उसने बड़ी देर से सोचा, गाड़ी कार राइड में चुपचाप हो गई, फिर घर आके उसने पूछा, तो तुम्हें व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट डज दिस वर्ड बैगेज मीन, अ डिवोर्स? तो वो कहता है हाँ जी, यस अ डिवोर्स. एंड देन शी सेज किड्स. Then he says, yeah, that's also like baggage. And then she asks him less time. And then he says, yeah, like obviously, because agar tumhare itne sare ye sara hoga, then how are you going to give time to the relationship? Hamare beech mein jo ho raha hai. To wo kehta hai, what about money going to your kids? Because obviously your kids are your priority aur unki khushi zyada important hai hamare naye pyar wale relationship se zyada. And then he said, of course, yes to all of those things. And then she said, well, those are all the things that tumhari zindagi mein abhi ho raha hai. So how is it fair for you to date and expect this from someone who is younger, who does not have all these things? बट मैं ये सारी चीज़ें इग्नोर करके मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ. तो फिर उन दोनों के बीच में इस बात को लेके थोड़ी अनबन हुई, थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, दे फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है, दे एंडेड इट, दे मूव्ड ऑन. ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या होता है कि लेकिन उसके पहले, बाय द वे, ही ट्राई टू डिफेंड इट, कहता नहीं देखो वो अलग है, वो इट्स डिफरेंट, आई एम अ मैन एंड आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट यू आर द गर्ल एंड यू नो योर ड्यूटी शुड बी विद योर हस्बैंड, ऐसे ऐसे करके. तो फिर सोच में पड़ गई थोड़ी देर बाद. फिर कुछ हफ्ते बीतते हैं, दे आर स्टिल काइंड ऑफ यू नो इन अ रिलेशनशिप. ऑफकोर्स टेंशन आ जाती है उनके रिलेशनशिप में, फिर सम हाउ दे मैनेज इट, यू नो दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट मच. देन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स लाइफ प्रूव्स द पॉइंट. बेसिकली इस बंदे की लाइफ में कुछ सीन होता रहता है, बिकॉज ऑफ विच ऑल ऑफ द थिंग्स दैट शी आस्क्ड हिम, ऑल ऑफ द सो कॉल्ड कोट अनकोट इमोशनल बैगेज, दे वर कमिंग आउट टू बी ट्रू. तो क्या होता है, वी विल डू इट आफ्टर द सॉन्ग.

0: तो गाइज वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, रीच आउट तारा कमर्शियल एनर्जी. दे हैव कम्पेटिटिव रेट्स एंड दे आर सर्विंग टेक्सास सिंस 2002. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com today फॉर योर कस्टमाइज एनर्जी प्लान.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologereeshwar.com.
5: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
6: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
5: Miss Clicks?
7: 100 लोगों ने click भी किया.
5: Customers कितने आए?
8: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
7: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Funasia network product.
9: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
11: हे, आर यू गोइंग टू रवि'स ट्रेड मार्केट this year?
12: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways and save big for your store?
11: When is it?
12: Thursday, October 29th, Friday, October 30th and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
11: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
13: Customers must bring their valid tax number and tobacco. लाइसेंस.
14: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
15: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
16: पेज 3 ईटरी. ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
17: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
18: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 a.m. टू 8 p.m. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट.

guys, we are back. Yes, it is 9 o'clock and you are still listening to Ippy the Hippie only on Fun Asia Radio 104.9 FM. Break mein jaane se pehle hum log ek story sun rahe the about the age gap story. 44-year-old guy meets 31-year-old. They are dating. We're talking about emotional baggage. Agar aapne abhi join kiya hai, main jaldi fatafat se ek brief deti hu. Basically, there is this 44-year-old guy who's had a divorce like about 2-3 years ago. And now, after his divorce, which was kind of, by the way, pretty trauma-inducing or whatever. And then he meets this young girl who is 31 years old. They've been dating for a year. They're living together. But this guy has older kids. And then he and his ex are also now in a much better place, in a much amicable position. तो अब वो डिनर पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ. डिनर पे जाके उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि भाई तेरा तो टाइप है, तू तो हमेशा यंग लड़कियों को डेट करता है. तो वो कहता है हाँ यार वो तो मैं थोड़ा सा करता हूँ. दैट्स बिकॉज यंग गर्ल्स हैव लेस बैगेज, मतलब उनके साथ डील करना ईजी होता है. दे हैव लेस एक्सपेक्टेशंस एंड दे आर जनरली मोर ईजियर टू मोल्ड. अ लॉट ऑफ ओल्डर गाइज आर गोइंग टू से दैट अबाउट यंगर वुमेन, ओके, एंड दे आर मोर एडजस्टिंग. दैट्स अ वर्ड आई एम श्योर यू गर्ल्स हैव हर्ड इट, आई एम श्योर यू गाइज हैव यूज्ड इट, यू नो. और मदर इन लॉ वाली जो होती हैं वो भी बोलती है कि अरे वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, ऐसे ऐसे करके एडजस्टिंग, वो वाली वर्ड्स बहुत यूज होती हैं. So he says that younger girls are usually easier to adjust like that. ठीक है. तो his girlfriend who was sitting there, she was listening to this whole thing. She's younger, right? 14 years younger. And she's listening and she's a little bit like, अच्छा is that why you are dating me? कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है. I mean I actually love you a lot. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. फिर वो घर आ जाती है, फिर इसके बारे में बात होती है. Then she realizes what he means by so-called quote-unquote baggage is basically having a traumatic रिलेशनशिप जिससे वो बाहर आ चुके हैं, हैविंग बच्चाज फ्रॉम प्रीवियस मैरिज, या फिर हैविंग अ मैरिज इन द फर्स्ट प्लेस, या फिर यू नो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स अ डिफरेंट, नॉट अ डिफरेंट फैमिली, स्टिल हिज फैमिली बट नॉट देयर हाउस होल्ड, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक योर ओल्डर किड्स लाइक दैट. तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं. एंड देन शी रियलाइजेस कि अच्छा दैट्स वॉट ही रियली मीन्स. Then what happens? कुछ ऐसे ही कुछ हफ्ते निकलते हैं और उस बंदे की लाइफ में ना थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती है, जैसे सबकी लाइफ में आती है. यू नो टाइम टू टाइम गुड थिंग्स बैड थिंग्स हैपन इन एवरीवन्स लाइफ. व्हाट हैपेंस इज उसके और उसकी एक्स के बीच में सडनली कस्टडी को लेके कुछ लड़ाई हो जाती है. ओके, देन द किड्स इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट देयर मॉम्स हाउस ओवर अ सर्टन वीकेंड व्हिच वाज द मॉम्स वीकेंड, दे लैंड अप एट द डैड्स हाउस. द गर्लफ्रेंड is very understanding. She's like, nahi, theek hai, they are your kids. I mean, where are they going to go? Sure, let them come. It's okay. I totally understand. Theek hai? Phir dusri week, kuch aur ho jata hai. Bacche phir aa jate hai. Ya phir koi financial responsibility is tarah se aa jati hai. Where they were saving for a trip. However, something happens and he has to give that money towards his kids. You know, something, maybe school fees or whatever. And they can't take that trip anymore. So, that trip gets cancelled like that. Then, ऐसे कुछ कुछ कुछ होता है, ठीक है. एंड देन ही हैज टू कवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड ऑल ऑफ इट. थ्रू ऑल ऑफ दिस द गर्लफ्रेंड इज वेरी सपोर्टिव एंड शी स्टेज एंड शी इज लाइक आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, दैट्स योर प्रायोरिटी. ऑफ कोर्स एज इट शुड बी फॉर एनी गुड गाय, दैट शुड 100% बी योर प्रायोरिटी, देन यू डू इट. ओके, देन अ वीक लेटर शी एंडेड इट. तो व्हाई डिड शी ब्रेक अप विथ हिम आफ्टर अ वीक लेटर, इफ शी वॉज सो अंडरस्टैंडिंग, व्हाई डिड शी ब्रेक अप? आई विल टेल यू व्हाई. तो वो स्टंड हो जाता है कि वो कहता है कि यार ये इज इट, वाई आर यू ब्रेकिंग अप विथ मी, इज इट बिकॉज ऑफ व्हाट माई फ्रेंड सेड, मतलब तुम्हें उस बात का इतना बुरा लग गया, डू यू थिंक आई एम रियली दैट शैलो कि मैं सिर्फ यंग लड़कियों को डेट करता हूँ क्योंकि मेरे में डेप्थ नहीं है? इज दैट वाई यू आर ब्रेकिंग अप विथ मी? आर यू ट्राइंग टू असैसिन, लाइक आर यू ट्राइंग टू लाइक एनालाइज माई कैरेक्टर लाइक दैट? डू यू रियली थिंक आई एम दैट शैलो? एंड देन शी सेज नो, it wasn't, it's not at all like that. I don't think you are shallow at all. But what they asked you at the dinner, it made me think about these certain things. Uske baad unhone jo dinner pe ye pucha ki tum aisa kyun hai that you are dating these younger girls, to wo kehta emotional baggage hai na. Fir maine ghar aake tumse pucha, what are these emotional baggages that you are talking about? Is it the fact that you've had a marriage? Kehta ha, I've already been done there, been there, done that. I'm really not looking for it.
कहती है ओके, देन शी गोज लाइक डिड यू ऑल्सो मीन लाइक किड्स, लाइक यू डोंट वॉन्ट टू डेट अनदर वुमन हु ऑल्सो हैज़ किड्स बिकॉज यू ऑल्सो हैव किड्स. ही इज लाइक या आई हैव सीन यू नो किड्स टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे टेक प्रायोरिटी एंड सो मेरे खुद के अपने बच्चे हैं सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी वन एल्स इज बैगेज राइट सो आई वॉन्ट टू गिव माई टाइम टू दैट. एंड शी इज लाइक कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, वेरी फेयर, अंडरस्टूड. उसके बाद देन शी स्टार्टेड आस्किंग other questions like did you also mean this bag, did you mean that, ऐसे करके ना जो सवाल उसने पूछे थे वो सारे पूछने लग गई. Then she said कि it made me think that ठीक है, I am with you in this like serious relationship, we are living together, we are planning a future, however these are the things that you mentioned, that so-called emotional baggage, वो शायद तुम्हारे लिए baggage है लेकिन क्योंकि तुमने वो एक time पे कर लिया है. Okay, you've been there, you've done that. Lekin for me, it is the first time. I've never had kids and I would like to have kids one day. But like you said, since you already have kids, I don't think you want kids. Number two, I want to have a nice big wedding, you know, because I've never done it. So I'm 31. I've never gone through that phase. I understand if you don't want to go through it. You are older. You've been through the whole thing. But I would like to go through it. But agar hum is relationship mein rahe, तो मुझे अपना फ्यूचर नज़र आ गया सामने कि वो शायद मेरा फ्यूचर कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि तुम्हें वो कभी नहीं चाहिए और हमारे बीच में हमेशा उस चीज़ को लेके डिसएग्रीमेंट होता रहेगा. दैट इज समथिंग टू रियली रियली थिंक अबाउट यू गाइस. सो वी गोना टॉक मोर अबाउट दिस एंड आई एम गोना ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन आफ्टर दिस सॉन्ग. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू कम एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, लेकिन वो क्वेश्चन आफ्टर दिस सॉन्ग.

0: तो गाइज, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं इन टेक्सस एंड यू आर वंडरिंग हाउ टू कन्वर्ट दोज लीड्स इनटू सेल्स एंड एक्चुअली इनटू कॉम्पेंसेशन एंड एवरीथिंग, देन यू नीड टू रीच आउट टू स्मार्ट रीच, लिटरली स्मार्ट रीच डॉट AI. तो भाई, स्मार्ट रीच AI जो है, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट विच इज लॉन्च बाय फन एशिया नेटवर्क. It is one product that helps, takes the help of AI, of course, artificial intelligence, and helps you reach potential local customers, even those that are visiting your competitors. So, वो आपका जो business है इस तरह से optimize कर देंगे कि आपको भी sales आएंगी, आपके जो competitors हैं उनके जो hits आते हैं, उनके जो website वगैरह पे hits आते हैं, वो आपकी तरह भी direct हो जाए. Okay? This is across radio, digital, streaming TV and online audio. And then you can measure what truly matters. Ki calls, bookings, offer redemptions and actual visits to your business. You have to just random clicks on your website. So visit smartreachai.us and turn local attention into customers. It's a really good networking tool, you guys. I would definitely take the fayda of this.
1: Man, these clothes, they're not happy.
2: Machan, stop complaining all the time, man. We are the Machans. Let's go.

0: I had this strange dream, man.
1: I also had a strange dream, but that's not what we are talking about here today. भाई मेरे ड्रीम्स तो वैसे ही स्ट्रेंज होते हैं. द अदर डे आई सॉ समबडी मेकिंग पाइनएप्पल हेड्स. आई सॉ माय एक्स, बट इंस्टेड ऑफ हिज हेड इट वाज अ पाइनएप्पल एंड हिज हेयर वाज लाइक दोस पाइनएप्पल के पत्ते जो है ना वैसे. आई मीन आई डोंट नो गाइस, ट्रस्ट मी, द ओनली थिंग आई हैव एट नाइट इज माय मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 400 mg. दैट रियली नॉक्स मी आउट एंड आई लव इट. हाउएवर आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय ड्रीम्स. तो गाइज आगे बढ़ते हुए, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल एंड दैट गाय. यस, द एज गैप डिफरेंस इन देयर रिलेशनशिप. नाउ आई एम श्योर यू ऑलरेडी हर्ड द स्टोरी, लेकिन लेट्स समराइज द स्टोरी अ लिटल बिट एंड देन आई एम गोना ओपन द फ्लो फॉर क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चंस विल स्टार्ट हैपनिंग आफ्टर 9:30, आफ्टर द ब्रेक. सो इफ यू वॉन्ट एड समथिंग देन फील फ्री टू कॉल मी. वी विल हैव टू लिमिट, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा ही बचा है हमारे पास. सो वी विल हैव टू लिमिट ईच कॉलर्स कॉन्वर्सेशन टू एट मोस्ट लाइक 30 seconds टू 1 minute. सो प्लीज शेयर योर ओपिनियंस, बट कीप इट ब्रीफ एंड लाइक सुपर शॉर्ट. वील पुट यू ऑन एयर, बट यू हैव टू बी सुपर प्रिसाइज, ओके, सो दैट वी कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल. नाउ द थिंग इज, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी towards the end of it, लेकिन मैं इसको summarize करती हूँ पहले. Basically they broke up and then she says to him कि नहीं, I don't think you are shallow, लेकिन मैंने ये realize किया after that entire discussion, जो मुझे इतने दिनों तक realize भी नहीं हुआ. We've been dating for like a year and I didn't even realize this whole time that while you were talking about that emotional baggage, you have the seniority, you are very clear on your thoughts and what you want in a partner. I was unconsciously carrying your emotional baggage. तुम्हारा जो भी तुम्हारा बैगेज है, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा या फिर तुम्हारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी है, I was carrying it for you. And the thing is, तुमने अपनी प्रायोरिटीज तो क्लियर कर दी कि तुम्हें दोबारा शादी एज सच नहीं करनी है, दोबारा बच्चे नहीं, यू नो, यू डोंट वॉन्ट हैव अ फैमिली, यू डोंट सी योर सेल्फ डूइंग लाइक गेटिंग इन टू अ हाउस, लाइक बिल्डिंग अ न्यू हाउस, ऐसे ऐसे करके, you know. But I still haven't done any of those things, and for me, just being in this relationship means I was holding myself back from having all of these things which I'm going to later want. And she realized mujhe apna future thoda sa dikh gaya, and so that is why I'm making it clear. I still want a family, I still want the kids, and he made it clear that they didn't. Now the thing in this is ki इसमें कोई भी शैलो नहीं है, या फिर इस लड़की की डिमांड ज्यादा नहीं है लड़के, द फैक्ट दैट द गाय इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड.
2: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. लर्न हाउ अ पर्सनलाइज strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?

0: वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
6: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
5: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Family को चाहिए North Indian, friends को South Indian. अब जाए तो जाए कहाँ?
12: Simple. बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
13: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहां चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
13: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
11: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
14: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
4: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net। फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।

सो गाइज हम जिस बारे में बात कर रहे थे, यस अबाउट दैट एज गैप एंड देन गोल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन वो सब बोलने से पहले लेट मी जस्ट डू माई लास्ट अनाउंसमेंट फॉर टुडे। अगर आप अपनी कोई इवेंट होस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक अ पार्टी और अ वेडिंग और अ ग्रेजुएशन, अ हाउस वार्मिंग और अ स्पेशल सेलिब्रेशन, देन रीच आउट टू वेनेसा इवेंट्स। देयर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड दे ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, वेन्यूज, डेकोर, बाय सिग्नेचर इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड। कॉल हरी बसेरा एट 4694428770। यस, रीच आउट टू वेनेसा इवेंट्स, मे बी दे कैन हेल्प यू टेक द लोड ऑफ ऑफ योर हैंड्स, बिकॉज यू नो वट, इट्स नेवर नाइस, द प्लानिंग एंड ऑल दैट इज सो मच स्ट्रेस। आई नेवर लाइक डूइंग ऑल दैट। हाउ एवर, इफ यू लाइक इट देन गो फॉर इट, बट आई डेफिनेटली लाइक टू आउटसोर्स ऑल माई वर्क। आगे बढ़ते हुए गाइज, जैसे हम बोल रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट रिलेशनशिप वाला चक्कर, राइट? सो द एज गैप, 44 ईयर ओल्ड गाय, 31 ईयर ओल्ड गर्ल। सो नाउ माई फ्लोर इज ओपन फॉर यू। आई नो मेरे जाने का टाइम हो रहा है, वी ओनली हैव दिस फ्लोर ओपन फॉर 10 मिनट्स। ओके, द थिंग इज, शी रियलाइज दैट शी वॉज कैरिंग दिस बैगेज द होल टाइम विदाउट द फ्यूचर शी वॉन्टेड। उसने अपने फ्यूचर को भी ध्यान ही नहीं दिया। वो प्यार में कई बार लोग हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते कि हम लोग अपना आगे का फ्यूचर नहीं देख पाते, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सक्सेस के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर चूजिंग योर ओन पार्टनर टुडे, एंड स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, जब डाइवोर्स एंड डिवोर्स हैज बिकम, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। पहले के ज़माना नहीं रहा है। मुझे एक टाइम पे एक अंकल ने कॉल किया था, उन्होंने बोला था, बेटा आजकल के ज़माने में लोग डिवोर्स क्यों कर रहे इतना। तो मैंने बोला कि भाई अंकल, ऐसा है क्योंकि पहले के ज़माने में वो लोग डिवोर्स एक शर्मनाक वाली चीज़ होती थी। अगर आप डिवोर्स्ड हो जाते हो, देन एवरीबडी वाज लाइक, ओह नो, ज़रूर तुम में कुछ गड़बड़ होगी, तुम्हारे लक्षण सही नहीं होंगे। लेकिन आजकल वो टैबू हट चुका है, पीपल आर मोर ओपन माइंडेड अबाउट इट, क्योंकि कई बार डिसएग्रीमेंट्स होती है, इनकम्पैटिबिलिटी होती है, एंड पीपल डोंट वॉन्ट टू यू नो सफर थ्रू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकेंड चांस एट अ पीसफुल हैप्पी लाइफ विथ हूएवर दे वॉन्ट, और मे बी अलोन, इट डजेंट मैटर ऑनेस्टली। सो दैट इज वाई डिवोर्स इज मोर कॉमन। हाउएवर, नोबडी लाइक्स गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ डिवोर्स एंड स्प्लिटिंग अप, बिकॉज चाहे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वो ठीक हो, मे बी इट माइट बी अ बेटर सोल्यूशन देन स्टिकिंग विद एन अनहैप्पी मैरिज, लेकिन वाई गो थ्रू दिस वेन यू कैन प्रिवेंट इट द होल टाइम, राइट? सो दैट इज़ वाई इफ यू थिंक प्रैक्टिकली एंड यू लुक एट द फ्यूचर एंड यू लुक एट योर फाइनेंशियल गोल्स ऑल्सो, बट यू जस्ट जनरली लुक एट ऑल योर गोल्स इन लाइफ टुगेदर, देन इट्स ईजियर। इन दिस केस, she looked at her goals, she looked at the fact that she wanted a family, she wanted the big shadi, she wanted the bacche, she wanted the, you know, the whole experience of marriage and kids and this and that, and he clearly set it right. matlab usne fir uski expectations ko badhaye nahi, kehta hai ki dekho bhai, maine to kar liya ye sab, I don't want to go through this again. Now my question to you is, do you think, kai baar hum log kya karte hai na relationship mein, हम लोग रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, होपिंग दैट द अदर पर्सन चेंजेस देयर माइंड, जस्ट सिटिंग विद दिस होप दैट दे चेंज देयर माइंड। व्हाट डू यू थिंक शी वाज राइट टू ब्रेक अप विथ हर एंड मूव ऑन, और शुड शी हैव गिवन इट मे बी 6 more months टू अ ईयर टू सी इफ ही एक्चुअली चेंज्ड हिज माइंड और शी कुड चेंज हिज माइंड? व्हाट डू यू थिंक? You can call me and let me know at 972-235-5555. We are going to do this on air. So if you're not comfortable with sharing your opinion on air, you don't have to tell me your name. You can just say that, hi, I don't think la la la la. But if you feel comfortable with sharing this opinion on air, then I'm sorry. If you feel comfortable with sharing your name, then we will announce your name. But if you don't want to say your name, we will not say it. We just come and say, what do you think? It is an on-air poll, okay? So, my number is 972-235-5555. Give me a call and let me know. Tab tak ke liye, aap ye gaana suno. Hey, that rhymed. No, with suno.

0: क्या कहें।
1: भाई आप भी समझा करो, क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो चुका है एंड आई एम अबाउट टू लीव। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू एक्सटेंड टुवर्ड्स मी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपको मेरी बातें पसंद आती है, कुछ बकवास भी पसंद आती है कई बार, कुछ अच्छी बातें तो काफ़ी, मतलब आई नो यू गाइज लाइक इट, यू गाइज कनेक्ट विथ इट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ होती है, क्योंकि जब हम रेडियो पे बात करते हैं ना, देखो बात करना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, आप मुझे देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, और उसी से आप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड यू एक्चुअली रिलेट टू इट एंड कनेक्ट टू इट। आई लव इट, थैंक यू सो मच। मेरा यहाँ का ये सफ़र सफल होता है तो इसीलिए, जस्ट बिकॉज मेरे को एक लास्ट रिक्वेस्ट आई थी और उन्होंने ये गाना मेरे लिए डेडिकेट किया, थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं ये गाना बजा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेती ये वाला रिक्वेस्ट। बट आई होप यू हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, और मैं आपसे मिलूँगी मंडे को। मैं जा रही हूँ अपनी छुट्टी पे, नहीं छुट्टी तो नहीं, बट मैं एनी वेज आई एम गोना सी यू ऑन मंडे। अब हैव अ वेरी वेरी नाइस इवनिंग एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड। इफ यू कैन ट्राई टू गो टू द टेक्सस फेयर, गो फॉर इट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली रियली फन। आई थिंक आई एम गोना गो टुमारो, बिकॉज व्हाई नॉट, इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्सस, राइट? आई मीन वी आर टेक्सन्स आफ्टर ऑल, ई हा। तो ये गाना मेरे लिए

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
6: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
7: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

बस तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एक्स्ट्रा सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा साम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरा

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
1: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
0: मिस क्लिक्स
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
0: कस्टमर्स कितने आए
3: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
4: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
5: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशिया रेडियो पर

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: what would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
1: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
2: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
1: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
2: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
3: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट.
4: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा.
3: मिस क्लिक्स,
2: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
3: कस्टमर्स कितने आए?
5: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
2: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
6: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
0: फनेशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 469-424-3188 और ईमेल sales@phanasia.net. फनेशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
3: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net। फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
2: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
1: Miss Clicks?
3: 100 लोगों ने click भी किया.
1: Customers कितने आए?
4: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
3: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Funasia Network product.
5: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Funasia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: नित्य की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। The Dill of Dallas, Heart to Heart.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
1: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
4: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
6: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में बच चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए?

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था,

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।
1: एक किस

करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज, बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: We will have the world news coming up for you shortly, and plenty of music all lined up. But if there is a particular song you want to listen to, I'll take your calls. 972-235-5555 is the number here in the studios.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Ey wing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
5: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
10: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
11: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट.
12: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा.
11: मिस क्लिक्स,
13: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
11: कस्टमर्स कितने आए?
14: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
15: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
16: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
17: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
16: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
17: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
18: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
19: राहत फतेह अली खान,
1: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026. राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर.
18: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस. फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को.
1: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ.
18: टिकट्स ऑन टिकटमास्टर एंड सुलेखा.com.

0: ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
1: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
2: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: अरे यार, घर मिल गया।
7: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड ऑल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
8: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव्स दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
7: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
8: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
9: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: And whenever you hear any traffic updates on the FunAsia network, please do remember that they are brought to you by the law offices of attorney Omar Khwaja. So if you have been injured in a car or a truck accident, or there has been some kind of a slip and fall incident, you focus on your healing while attorney Omar will fight for you. And you pay nothing unless he wins. So call him 469-300-5046, 469-300-5046, or visit attorney Omar, OMAR.com, and get more details from him. We have plenty happening in this hour. We'll have guests, we'll have the world news, and later in the program, we also need to get you some stories from the annals of history that happened on today's date, which is the 9th of October, as we head towards a hot weekend. We actually touched 90 yesterday. We thought we were done with the 90s, but we managed to touch it yesterday, and it's going to be the similar kind of temperatures today, tomorrow, and Sunday.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
3: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
5: शॉपिंग बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही दो से तीन ऑप्शंस?
6: ऑप्शंस? आई विल गिव यू द लेटेस्ट डेस्टिनेशन।
3: इंट्रोड्यूसिंग पूजा'स ट्रेंड्स, लहंगाज, कोऑर्ड सेट्स, फ्यूजन वेयर, शराराज और ज्वेलरी, प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, ग्रैंड ओपनिंग सेल, फ्लैट 15% ऑफ। विजिट 10202 कोइट रोड, स्वीट 400, फ्रिस्को। कॉल 214-457-4897। पूजा'स ट्रेंड्स, योर ट्रेंड, योर स्टाइल।
7: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: दिल की बात किससे कहें?
12: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 469-581-1777। दैट्स 469-581-1777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
13: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
14: कितनी लंबी लिस्ट है?
13: बस 2 pages।
14: इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
15: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
16: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
17: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
18: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
19: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio।

10:10 by the studio clock and you're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. A din aur mausam to jhoomne wala ka hai hi because this is Friday, or should I say it's Friday. A very good morning DFW, this is Rumita and this is my show Gup Shup Gully. Friday ki ek alag hi energy hoti hai, right? Alarm wahi, traffic wahi, emails bhi wahi, but dil ko pata hota hai बस वीकेंड नजदीक है. नजदीक क्या, आज से ही वीकेंड है. लेकिन एक फनी ऑब्जर्वेशन जरूर होता है, मंडे को हम वीकेंड का वेट करते हैं और फ्राइडे आते आते वीकेंड को भी एक प्रोजेक्ट बना देते, लाइक ग्रोसरी, लॉन्ड्री, किड्स एक्टिविटीज, डिनर प्लान्स, पेंडिंग कॉल्स. संडे नाइट तक लगता है कि एक और वीकेंड चाहिए, लाइक वीकेंड से रिकवर करने के लिए बस एक और छोटा सा. तो आज फर्स्ट आवर में बात करेंगे आपके वीकेंड प्लान्स की, DFW में क्या हो रहा है और अपने दो दिन को जेन्युइनली एंजॉयबल कैसे बनाए. और 11 बजे से हमारा एग्नी आंट कॉर्नर वुड बी एक्टिव, दैट इज द दिल का डिलेमा विथ मी रुमिता. रियल लाइफ टाइप डिलेमास, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी समझ, बिना कोई जजमेंट के. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू योर दालस की धड़कन 104.9 FM फनीशा रेडियो.

27 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Funny Shah Radio. This is Gup Shup Gully and me. एंड फ्राइडे है यार, या फिर हम जैसे कहते हैं फ्राई ये है. एंड फ्राइडे का एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए. लाइक वीकेंड प्लान बनाने से पहले दो लिस्ट बनाओ यार, पहली जो आपको करनी है और दूसरी जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए. नोटिस द डिफरेंस. मुझे करना है मैं, हो सकता है कि कोई कहीं अच्छी जगह आप एक लेड बैक ब्रेकफास्ट इंजॉय करें, पार्क में वॉक करें, या फिर फेवरेट कॉफ़ी वो भी इंजॉय करें. और करनी चाहिए इस लिस्ट में आता है कि घर परफेक्टली क्लीन होनी चाहिए, सोशल मीडिया के लिए फोटोज होनी चाहिए, हर इनविटेशन जो आपको हर वीकेंड में मिलती है वो अटेंड करनी होती है. एंड फिर हम अपने वीकेंड के खुद ही गेस्ट बन जाते हैं. मैं तो कहती हूँ वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस अपना बनाना ज़रूरी है यार. कभी कभी एक काम कम करना इज द एक्चुअल अचीवमेंट. आई टेल यू, टेल मी, अपने वीकेंड के लिए शुड डू लिस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑनेस्टली वेट कर सकती है? और हाँ, अगर जवाब है आपके क्लोथ्स आयरनिंग, I'll not judge it. Don't worry. It's weekend, yaar. Enjoy kar lo thoda.

चीजों को समझने में जमाना लग जाता है और कुछ डिसीजंस अगर आप सही वक्त पर ले लेंगे ना तो आने वाला जमाना भी बदल सकता है। You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. बात हो रही है आपको मतलब कुछ decisions के बारे में, especially जो आप आपकी hard earned money के बारे में या अपने financial future के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए AG FinTechs लेकर आ रहा है एक free live webinar with Anil Granthi, जहां बात होगी tax saving opportunities, retirement planning, smart investments और year end tax strategies की भी। That is happening on Sunday, October 11th at 11 AM Central Time. You can register yourself at agfintechs.com और tax, accounting, payroll, bookkeeping या फिर business advisory services के लिए AG FinTechs is always there to help you. Call Anil Granthi at 469-942-9888. That's 469-942-9888. This part of Gup Shup Gali is proudly brought to you by AG FinTechs.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apne kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
2: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
2: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना. इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
4: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
7: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
11: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
12: डील कहाँ?
11: सिंपल, पासिया पे. इंट्रोड्यूसिंग पासिया. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पासिया, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
12: डाउनलोड पासिया, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
13: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
15: फनेशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@phoneasia.net. फनेशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.

दिल तो गानों ने लूट लिया और अब बारी है राहत फतेह अली खान की कॉन्सर्ट जो हो रही है उसका टिकट लूटने का, जीतने का। राहत फतेह अली खान साहब विल बी परफॉर्मिंग लाइव ऑन फ्राइडे अक्टूबर 16th एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को एंड द कॉन्सर्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8:30 PM ऑनवर्ड्स एंड राइट नाउ आप जीत सकते हैं उसी कॉन्सर्ट के का एक टिकट। जीतने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज गेस द सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू गिव अ क्यू जस्ट म्यूजिक से आपको पता करना है कि ये कौन सा गाना है और गाना भी है राहत फतेह अली खान साहब का। स्टूडियो का नंबर इज 9722355555। देखते हैं एक्चुअली में राहत फतेह अली खान के सबसे बड़े फैन कौन है। You're listening to 104.9 FM Fanisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rimita. And this is the cue of a song of Rahat Fateh Ali Khan. All you have to do is to guess ki ye gana kaun sa hai. Studio ka number is again 972-235-5555. Jaldi se phone karke bataiye aur jeet jaiye a giveaway ticket of Rahat Fateh Ali Khan concert, which is happening on 16th of October in Frisco at the Comerica Center. This is Gup Shup Gali with me, Rumita.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: दिल की बात किससे कहें?
7: पंडित गुरुदेव से। 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज। प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए। कॉल 4695811777। दैट्स 4695811777। पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए।
8: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
9: लैपटॉप में।
8: इन्वेस्टमेंट?
9: गूगल ड्राइव।
8: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
9: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
8: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
10: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
10: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
13: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
14: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
15: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
14: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
10: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco, your divine destination for festive fashion.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
17: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
1: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
19: सच में? सब संभाल लेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
2: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
5: राहत फतेह अली खान
20: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026. राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर.
2: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस. फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को.
20: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ.
2: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rmita. और मैंने realize किया कि आजकल news सबसे पहले family WhatsApp group में आती है और unfortunately source होता है कि मेरे friend के cousin के neighbor ने भेजा है. ऐसा ही कुछ, आई डोंट नो ऐसा ही एग्जैक्टली नहीं, बट परिणीति चोपड़ाज रिपोर्टिंग लाइव बिगिन स्ट्रीमिंग टुडे ऑन अ वेरी पॉपुलर ओटीटी चैनल दैट इज आज से अक्टूबर 9th से. दिस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फॉलोज जर्नलिस्ट्स कन्फ्रंटिंग एक इलीगल माइनिंग ऑपरेशन. आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने परिणीति की लेटेस्ट शक देखी है. एंड आई मस्ट टेल यू आई हैव वॉच्ड इट. शी इज फिनोमिनल इन दैट सीरीज. अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, गो एंड वॉच इट फॉर योर फ्राइडे वॉच और योर वीकेंड वॉच. ऐसे ही और भी रिकमेंडेशंस आने वाली है इस आर ओनली ऑन गप शप गली विद मी रमिता. फिलहाल रिपोर्टिंग लाइव इज स्टार्टेड स्ट्रीमिंग टुडे ओनली ऑन नो ऑर्डिनरी मेंशंस.

7:21 by the studio clock. You're listening to Gup Shup Gully with me, Rumita, only on 104.9 FM, Funisha Radio. Last week release hui thi Drishyam 3. The conclusion aur sawal tha ke same crime, same family aur same police chase ko teesri baar kitna interesting banaya ja sakta hai. To film formula ko reinvent nahi karti hai, but suspense ka grip बिल्कुल बनाए रखती है. इस बार विजय सालगांवकर के सामने है जयदीप अलावत एज राजीव तोमर, एक स्वैगर हैवी पुलिस ऑफिसर जो मानता है कि उसके पास विजय को फाइनली हराने का एविडेंस जरूर है. अजय देवगन वंस अगेन कम बोलकर आंखों से ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे और जयदीप के डायलॉग्स और एटीट्यूड दोनों ज्यादा मतलब एकदम क्या बोले, दैट फेस ऑफ बिकम्स द फिल्म स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन एज आई मस्ट से. टबू एंड रजत कपूर प्रोसीडिंग्स गो ग्राउंडेड रखते हैं जो जैसे वो पिछले दो पार्ट्स में नजर आए, वाइल गायतोंडे हमारे गेट सम मेमोरेबल लाइंस दिस टाइम. इस फिल्म की वीकनेस अगर हम कहें, अगर हम इनको जज करें, तो कुछ ट्विस्ट्स बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है एंड जयदीप का कैरेक्टर कभी कभी ओवर ड्रामेटिक हो जाता है एंड 2.5 आवर रन टाइम एंड तक थोड़ा सा स्ट्रेच्ड फील हो सकता है. लेकिन फिल्म आपको कॉन्स्टेंटली यही सोचने पर मजबूर रखती है कि पुलिस सच में विजय से आगे है या विजय उन्हें बस ऐसे फील करवा रहा है. सो इफ यू स्टिल हैवन्ट वॉच्ड दृश्यम 3 द कंक्लूशन, इट्स स्टिल प्लेइंग इन थिएटर्स नियर यू, गो एंड वॉच. ओटीटी के रिलीज के लिए वेट मत करना यार, स्पॉयलर्स आ जाएंगे और मजा खराब हो जाएगा. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू दृश्यम 3 सॉन्ग्स.

मुस्कुराइए क्योंकि आज फ्राइडे है। यू आर लिस्निंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो। दिस इज गपशप गली विद मी रमीता। एंड वीकेंड प्लान्स के साथ थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती ही है, स्पेशली वो शॉपिंग जिसमें हम सिर्फ देखने आए हैं, ये बोलकर हम फाइनली कुछ नया कुछ खूबसूरत चूज कर ही लेते हैं। यू कैन डिस्कवर दिस एवरीथिंग ब्यूटिफुल अराउंड यू एंड जो पहन के आप अपने आईने के सामने बोलेंगे वाह क्या लग रही हूँ मैं। श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज ऑन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, वे यू कैन एक्सप्लोर देयर स्टनिंग हैंडक्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड्स एंड पोल की ज्वेलरीज, जो कि आपके ओकेशन के लिए, हर ओकेशन के लिए, आपके हर स्टाइल के लिए इज एकदम फिटेड। वीकेंड में जरूर विजिट कीजिए 13145 मेन स्ट्रीट सूट 220 इन फ्रिस्को, और यू कैन कॉल 4302311111। दैट इज श्री कृष्ण ज्वेलर्स। फ्राइडे का मूड थोड़ी तो स्पार्कल बनती है।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
4: I'm James Tallarico, and I approve this message.
3: Paid for by Tallarico for Texas.
5: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
6: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: Breakfast mein kya khana hai?
10: Keema paratha.
11: Mummy, omelette paratha.
12: Beti, halwa puri aur tarkari.
13: Ab Sunday ko teen alag nashta kaun banayega?
2: Signature cuisine banayega. Choose any delicious breakfast option. Keema with paratha, halwa puri with tarkari aur omelette. With paratha served with a cup of hot kadak chai for only $8.99. Available during weekend breakfast hours at Signature Cuisine in Plano. Weekend ka mood, garma garam desi food. Visit signaturecuisine.net.
14: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग। मार्विन दास एंड बिंदास सर्विसेज प्रेजेंट द 6th एनुअल साउथ एशियन फूड फेस्टिवल ऑन 1st नवंबर फ्रॉम 12 नून टू 8 पीएम एट द साउंड वेन्यू इन कॉपल। एंजॉय फूड, शॉपिंग, डांस एंड लाइव म्यूजिक विद फ्री एंट्री एंड पार्किंग। Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

11:36 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Rumita and Gup Shup Gali mein abhi time hai Dil ke Dilemma segment ka. Naam thoda dramatic hai but intention bilkul simple hai. Life ke awkward moments ko thoda calmly unpack करना. आज जो सिचुएशंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो एवरीडे लाइफ इंस्पायर्ड एग्जांपल्स है, नॉट मैसेजेस एट्रिब्यूटेड टू एनी पर्टिकुलर रियल लिसनर. आप अपनी साइड सोचिए, क्योंकि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल डिफरेंट चीजें फील कर सकते हैं. और मेरा एक रूल है, एडवाइस देना इजी है लेकिन एडवाइस को जीना वो बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए हर डिलेमा में हम एक प्रैक्टिकल सेंटेंस भी ढूंढेंगे जो आप एक्चुअली बोल सकते हो, कर सकते हो. और याद रखिए, दिस इज नॉट सम यू नो आई एम जस्ट एन आरजे, वी आर डिस्कसिंग, वी आर लिसनिंग. दिस इज नॉट अ थेरेपी सेशन या फिर मैं कोई लॉयर बिल्कुल नहीं हूँ. सीरियस इश्यूज में भी आप थोड़ी सी राहत ढूंढ के निकाल सकते हो. जस्ट अ कैजुअल डिस्कशन. रेडी? वी विल डिस्कस इट इन दिस आवर, इन दिस सेगमेंट. फिलहाल बैक टू बैक दो ब्लॉकबस्टर हिट्स.

गाने वाले शरारत तो क्यूट होते हैं, लेकिन अगर शरारत और मल्टीपल शरारतें आपकी रियल लाइफ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। यू लिसनिंग टू 104.9 एफएम फरीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रुमिता, एंड टाइम फॉर दिल का डिलेमा, जहां पे एक लिस्टर ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, एंड दिस वन एक्चुअली डिजर्व्स अ लिटिल थॉट। उनका कहना है कि उनके ग्रुप में एक आदमी है जो बार बार उनके एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन का मजाक बनाता है। आई मीन सब हंसते हैं, वो भी ऑकवर्डली स्माइल कर देते हैं, बट जब वो कहते हैं, अपने दिल को एक्सप्रेस करते हैं कि अरे ही डिडंट लाइक दिस जोकिंग अराउंड, तब दैट पर्सन ऑलवेज, एंड दिस हैपेंस एवरी टाइम, कि अरे जोक था, बहुत सेंसिटिव हो, ये तो चलता है, बट एक्चुअली में चलता है नहीं। देखिए, ह्यूमर तभी ह्यूमर है जब सब एंजॉय कर रहे हैं। जब एक बंदा रिपीटेडली पंच लाइन बन रहा हो तो वो हार्मलेस जोक नहीं हो सकता है। इसमें आई डोंट थिंक दैट एवरी जोक और एवरी ह्यूमर इज सूटेड एवरी टाइम अराउंड द सेम पर्सन फर्स्टली, और अगर बंदा बोल रहा है कि उन्हें पसंद नहीं है तो वाई डू इट एंड वाई हर्ट समवन। आई फील आप ऐसे बोल सकते हो कि आई अंडरस्टैंड कि ये जोक आप इसे जोक समझते हैं, बट यू कैन ऑल्सो से दिस इन अ वेरी पोलाइट एंड अ काम वे, बट आई डोंट एंजॉय दीज जोक्स अबाउट माई एक्सेंट। एंड सीरियसली, एक्सेंट के बारे में आज 2026 में भी कौन ऐसे इंसल्ट करता है, कौन ऐसे जोक मारता है? इट्स वेरी बैकडेटेड, इट्स अ वेरी डेटेड थिंग, एंड इफ पीपल स्टिल फाइंड इट फनी, इट इज सो नॉट कूल। नो आर्ग्यूमेंट, नो इंसल्ट बैक, बस एक क्लियर बाउंड्री अपने लिए सेट करना। और अगर ये चीज आप रिपीटेडली, आई मीन यू आर फेसिंग फ्रॉम द सेम पर्सन, जस्ट what should I say, I don't see any stuff that will stop it until and unless you stop any interaction with the same person. DFW, aapka kya manna hai, boundaries disrespect ki kitni honi chahiye aur kya honi chahiye? Let's gupshup only on Gupshup Gali.

प्रेम की नैया हो सकती है राम के भरोसे, लेकिन आपकी जो हेल्थ है उसकी नैया आप ही के भरोसे है। इसीलिए सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिएगा, देखेंगे सोचेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सब बातें अभी नहीं चलती है, अपना ख्याल खुद ही रखो। पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर कम्युनिटी की केयर कर रहा है, एंड नाउ विद न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इट इज ग्रोइंग अंडर द नेम लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब्स, एक्सरे, सिटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और इसके साथ साथ उनका हिमालयन मेड स्पा भी, सब कुछ मिल सकता है अंडर वन रूफ। लनॉक्सी मेडिकल इज ओपन 7 days a week, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। आपको अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट वॉक इन एनी टाइम एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, केयर्ड एंड जस्ट बी देयर फॉर योर हेल्थ। लनॉक्सी मेडिकल अंडर द नेम फाउंडेड टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक अंडर द नेम लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: जहाँ तंदूर की आंच हर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ इरविंग में.
11: Introducing Punjab by Page 3. Punjab से आए शेफ्स के हाथों बना अमृतसरी कुलचा विद छोले और मक्के की रोटी विद सरसों का साग, साथ में एक ठंडी लस्सी.
10: पंजाब by Page 3 now in Irving. स्वाद पंजाब का, अंदाज Page 3 का.
12: शॉपिंग बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही दो से तीन ऑप्शंस.
13: ऑप्शंस? I will give you the latest destination.
11: Introducing Pooja's Trends. Lehengas, co-ord sets, fusion wear, shararas or jewelry. Premium quality, affordable prices. Grand opening sale, flat 15% off. Visit 10202 Coit Road, Suite 400, Frisco. Call 214-457-4897. Pooja's Trends. Your trend, your style.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं.
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं.
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं.
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax. Your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
21: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
21: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
22: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाई माई स्क्वायर फीट।

0: 10 minutes past 12, you're listening to 104.9 FM, Fanisha Radio. Aaj October 9th and yes, Navratri is almost here. And you were listening to the song from the movie Ye Prem Moliya. And Ayushmann Khurana ka kehna hai, जो कि इस फिल्म के हीरो है, कि सूरज बजाटिया की ये मूवी ये प्रेम मोल लिया सिर्फ इंडिया नहीं भारत के दिल से कनेक्ट करेगी, बिकॉज इसमें फैमिली, फ्रेंडशिप, रोमांस, शादी और ट्रेडिशनल वैल्यूज की ये जो फेमिलियरिटी है ना, उसकी वॉर्मथ है इस मूवी में. एंड आयुष्मान खुराना इज द न्यू प्रेम इन दिस बरजातिया फ्रेंचाइजी ऑपोजिट शर्बरी वॉग. एंड म्यूजिक इज बाय हिमेश भाई रेशम मिया. लेकिन सवाल ये है कि फास्ट थ्रिलर्स, एक्शन और शॉर्ट अटेंशन स्पैन के जमाने में क्या बरजातिया स्टाइल फिल्म्स अभी भी काम कर पाएंगी? मुझे लगता है बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि अगर इमोशंस जेन्युइन हो और स्टोरी टेलिंग आज के रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो, स्पेशली हम एनआरआईज के लिए, ऐसी फिल्म्स एंटरटेनमेंट के साथ साथ घर, शादी और पूरे परिवार वाली नॉस्टैल्जिया भी तो वापस लाती है. सो डीएफडब्ल्यू, आप बताइए, फैमिली ड्रामा आउटडेटेड है या स्टिल द अल्टीमेट कंफर्ट वॉच फॉर यू? और ऑनेस्टली मुझे लगता है आयुष्मान खुराना के लिए ये फिल्म चलनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्म्स और बॉक्स ऑफिस के बीच ना एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है. नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ, जस्ट सेइंग.
1: दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है.

पीठ ऐसी हो तो वीकेंड मूड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और वीकेंड मूड के साथ साथ एपेटाइट भी। तो लंच प्लान्स के लिए हेड टू द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को एंड एंजॉय देयर वीकेंड लंच बफे फीचरिंग डिलीशियस डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल एंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्लेवर्स। द बफे इज अवेलेबल एवरी सैटरडे एंड संडे 12 बजे से 3 बजे तक एंड यू कैन बी देयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड जस्ट विजिट फ्लेवर लाउंज विच इज लोकेटेड इन ऑन द प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को फॉर द गुड फूड एंड गुड मेमोरीज। You're listening to 104.9 FM Funny Asia Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita.

वाला गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिया।

विकी कौशल का स्टाइल, करण औजला का स्वैग और वो हुक स्टेप जिसने सोशल मीडिया को हिला के रख दिया था। यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी रबीता ओनली ऑन 104.9 FM फनी शो रेडियो। और अब सोचिए अगर आपके बिजनेस कंटेंट में भी ऐसा ही स्टाइल, एनर्जी और स्क्रॉल स्टॉपिंग इंपैक्ट हो तो, because that's where relative media comes in. Creative concepts, professional video production or engaging reels ke through relative media aapke products, services or brand personality ko screen par aise present karega जैसे ऑडियंस उसे देख कर रहे हैं, रुक के देखेगी यार आखिर हो क्या रहा है। रिलेटिव मीडिया अ फन एशिया नेटवर्क प्रोडक्ट फॉर ऑल योर सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉल्यूशन ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज योर बिजनेस हैज अ स्टोरी एंड वी, दैट इज द रिलेटिव मीडिया फन एशिया नेटवर्क इनिशिएटिव, विल पुट दैट इन द स्पॉटलाइट। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन 104.9 FM फनी शिया रेडियो।

फ्राइडे की गपशप यही होती है रैप, बट वीकेंड की मस्ती अभी भी शुरू, अभी शुरू हुई है, अभी तो वीकेंड बाकी है। दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ एंड टेकिंग अ लीव फ्रॉम गपशप गली। खुश रहिए, फिल्मी रहिए और मंडे को फिर मिलेंगे फ्रेश बातों के साथ। और क्योंकि आज फ्राइडे है यानी कि जुम्मा है, तो साइन ऑफ किसी ऑर्डिनरी गाने से कैसे हो सकता है? नहीं, आप ही बताओ।

0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
3: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
2: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
3: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
4: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
4: Barista House, richness of biryani bliss.
5: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
6: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
1: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
8: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
8: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
4: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी 2 entrees एंड गेट 1 appetizer एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
4: कितनी लंबी लिस्ट है?
1: बस 2 pages। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
4: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLworldwide.com.
11: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and
0: Antinu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.

भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं कि गाने ऐसे प्ले करें कि स्पीकर फट जाए। हम चाहते हैं गाने ऐसे हों जो आपके दिल को छू जाए। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसना, टुडे filling in for me too. It is 47 minutes past 12 on this 9th of October 2026. It's a fabulous Friday afternoon. This part of our show brought to you by Dream Home Mortgage. वैसे तो ये कंपनी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, because they've been serving our community for over 2 decades. जी हाँ, Dream Home ने कितनी ही families के घर own करने के सपने को सच किया है। वो ना सिर्फ आपकी मदद करते हैं घर के मोर्टगेज में, बल्कि इस पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बना देते हैं। सो इट्स नॉट अ हेडेक व्हेन यू आर बाइंग अ होम, इट्स ऑल हैसल फ्री थ्रू ड्रीम होम मोर्टगेज। कॉल कीजिए हुसैन बंजवानी साहब को 9722455626 और विजिट dreamhomemortgage.com। आज के सेगमेंट में आपका मनोरंजन किया जाएगा विद द ऑसम 80s। 1:30 बजे तक हम ये सेगमेंट आपके लिए जारी रखेंगे, एंड आई होप यू विल एंजॉय माई सेलेक्शन।

अनिल कपूर और डिंपल कपाडिया पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप। सपना सपना आई थिंक सपना मुखर्जी की थी ये आवाज। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इट्स 53 मिनट्स पास्ट 12। ऑसम 80s आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

What a beautiful song, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में सिलसिला फिल्म का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप. Let's continue awesome 80s with this next track. This segment brought to you by AG Fintechs.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing, और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे स्वीट 205 फ्रिस्को.
6: दिल की बात किससे कहें?
7: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 469-581-1777. दैट्स 469-581-1777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
8: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
9: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
10: डील कहाँ?
9: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
10: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
11: Straight from the heart. Gal Hindi Hindi Bol.
12: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
10: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
11: Phone uthaye, number dabaye.
12: 347-449-4242.
13: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन. Just 3 doors down with limited reservation available.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
18: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज. दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी. कॉल तो करो 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
19: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
20: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
21: राहत फतेह अली खान.
20: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
21: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 p.m. Comerica Center, Frisco.
20: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
21: Tickets on Ticketmaster and Sulekha.com.
22: Jag ghume aathare jaisa na koi.
23: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host Amreen Hastant and I'll be with you till 2:30 PM. हमारे awesome 80s का ये सेगमेंट जारी रहेगा डेढ़ बजे तक, यानी के till 1:30, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे 1980 से लेकर 1989 तक के हिट गाने. एंड बिफोर आई गो ऑन, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट ए फ्री वेबिनार दैट्स बीइंग होस्टेड बाय एजी फिनटेक्स. जी हाँ, यू कैन डिस्कवर टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ईयर एंड स्ट्रेटजीज विद अनिल गांधी हिमसेल्फ. ये इवेंट होने जा रहा है संडे अक्टूबर 11th को सुबह 11 बजे एंड दैट इज सेंट्रल टाइम. यू विल नीड टू रजिस्टर, सो विजिट कीजिए agfintechs.com एंड सिक्योर योर स्पॉट टुडे. दैट इज agfintechs, द मोस्ट ट्रस्टेड अकाउंटिंग फर्म इन DFW.

नाजिया हसन की आवाज ने धूम मचा दी थी 1980 का ये गाना जब रिलीज हुआ था. जी हाँ, दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी कुर्बानी और ये गाना फिरोज खान और जीनत अमान पर पिक्चराइज किया गया था. यहीं से शुरुआत हुई थी नाजिया हसन की सिंगिंग करियर की. एंड इट्स सो सैड दैट शी लेफ्ट अस वेरी अर्ली व्हेन शी वाज इन हर 30s. इट्स 10 मिनट्स पास्ट 1 एंड यू आर लिसनिंग टू ऑसम 80s ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. इस सेगमेंट में हम आपको 80s के हिट गाने सुनवा रहे हैं. सच रिक्वेस्ट नहीं ले रही, बट ट्रस्ट मी, आपको मेरी सिलेक्शन जरूर पसंद आएगी.

0: लिया लिया ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: के घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि 80s का डेकेड अमिताभ बच्चन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल, प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल था। इस गाने में भी उन्होंने क्या भरपूर डांस किया और एक्टिंग की, ना सिर्फ इस फिल्म में बल्कि आई थिंक ही गेव हिज बेस्ट इन ऑल द मूवीज दैट बिकेम अ सुपर हिट। और साथ में किशोर कुमार की आवाज, उनकी आवाज की शोखी, इट ट्रूली मैच्ड व्हाटएवर कैरेक्टर अमिताभ बच्चन प्लेड इन द मूवीज। ये गाना फिल्म नमक हलाल से लिया गया था एंड यस, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ द 80s। 15 minutes past 1, ऑसम 80s का सेगमेंट सुन रहे हैं आप। आई डू हैव अ कपल ऑफ गिव अवेज। राहत फतेह अली खान केक साहब के कॉन्सर्ट का टिकट भी है जो हम देंगे आपको 2:30 बजे से पहले, सो सुनते रहिए। आइए कंटिन्यू करते हैं अब इस अगले गीत के साथ।
1: प्यार किया,
2: किया।
1: कभी किसी को दिल दिया,
2: दिया।
1: मैंने भी दिया।
0: This part of our show brought to you by attorney Omar Khwaja. Now, we don't want anything bad to happen to you, lekin agar koi accident ho jata hai, khuda na khasta, to yaad rakhiye, Omar Khwaja is on your side. He will fight for you and make sure you get the highest amount of compensation possible. Call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com.

शांति ओम। ये गाना इतना सुपर हिट था 80s में कि फिर इस पर 2000 के बाद शाहरुख खान वाली मूवी भी बनी, जिस मूवी का नाम ही था ओम शांति ओम। यहाँ आवाज थी किशोर कुमार की और ये गाना ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। कर्ज 80s की एक सुपरहिट फिल्म थी और इसका सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और गाना अगर आपको याद हो, आई थिंक देयर वर क्वाइट अ फ्यू सॉन्ग्स फ्रॉम दिस मूवी दैट बिकेम अ सुपर डुपर हिट। ऑलराइट, अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ फिल्म कुदरत से लिया गया है। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में सिर्फ एक बात बताऊंगी कि इस गाने के दो वर्जन्स थे फिल्म में। आपने मुझे ये बताना है, and it's not an easy question, I'll give you two parts to the question, ke jo dusra version tha wo kisne gaya aur kis pe picturize kiya gaya tha. ye version jo main play karne ja rahi hu, of course this was the most popular version, ye rajesh khanna aur hema malini par picturize kiya gaya tha aur awaaz kishor kumar ki thi. aap mujhe bataiye ki is gaane ka dusra version jo main play nahi kar rahi wo kis actress पर पिक्चराइज किया गया था, और अगर आप बता सकें कि किसने गाया है तो आप बनेंगे इनाम के हकदार फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड आपके लिए।

आई नो, बॉलीवुडोलॉजी की डिग्री तो मेरे पास है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि हमारे लिसनर्स इतने नॉलेजेबल हैं और उनकी याददाश्त मुझसे तो लाख गुना बेहतर है. आई एम सरप्राइज्ड यू गाइस कुड नॉट गेट दिस. आई रिसीव्ड मल्टीपल कॉल्स, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया. सो इवन दो आई एम गोना प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग, आई एम गोना कंटिन्यू दिस. ओके, सो आई एम गोना गिव यू गाइस अ फ्यू क्लूज. ठीक है, इस फिल्म में ये इस गाने का हमें तुमसे प्यार कितना, ठीक है, एक अलग तर्ज, एक अलग टून पर गाया गया था यही गाना. इसका एक अलग वर्जन था विच वॉज इन द मूवी, जो कि राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर नहीं पिक्चराइज किया गया था, और वहाँ आवाज भी अलग थी. इट वॉज नॉट लता मंगेशकर, इट वॉज नॉट किशोर कुमार, बिकॉज इट वॉज इवन संग डिफरेंटली. सो इट वॉज डन इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिस पर ये गाना पिक्चराइज किया गया था, बिकॉज वो एक्ट्रेस हीरोइन भी नहीं थी इस फिल्म की, राइट, एंड शी वॉज नॉट इवन इन अ हीरोइन रोल. सो अगर आप मूवी को याद करने की कोशिश करें तो शायद आपको कुछ याद आ जाए, जिस तरह हेमा मालिनी को वो वर्जन और वो गाना सुनकर याद आ रहा था फिल्म में. 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर, एंड इफ यू थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कॉल मी एंड विन एंड क्लेम योर प्राइज. Awesome 80s will continue with this beautiful song from the film Ye Vaada Raha.

लवली लवली सॉन्ग, लेकिन अब हमें हम बीच में इसको इंटरप्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई नीड टू टेल यू कि वी गॉट अ विनर. कॉन्ग्रेचुलेशंस वरुण, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. द एक्ट्रेस वॉज अरुणा ईरानी और परवीना सुल्ताना ने गाया था इस गाने को, परवीन सुल्ताना ने, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल वर्जन एंड इट वॉज नॉट द सेम ट्यून, इट वॉज अ लिटल बिट डिफरेंट. Anyway, अब कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ऑसम 80s विद दिस लास्ट सॉन्ग फ्रॉम डिस्को डांसर.

0: रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
2: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
3: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
2: Miss Clicks?
4: 100 लोगों ने click भी किया.
2: Customers कितने आए?
5: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
6: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
1: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
6: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
1: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
6: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
7: बेटा 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
11: सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट। वी हैड सो मच फन।
8: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट। Where can we eat now?
12: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
13: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
14: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
8: उमर ख्वाजा।
15: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
21: खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आई बी विथ यू टिल 2:30 एंड आई एम सब्स्टिट्यूटिंग टुडे. दिस इज नॉट माई रेगुलर स्केड्यूल. अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन स्टाइल पसंद आ रही है या आपका दिल चाह रहा है कि आप मेरी आवाज़ में कुछ और प्रोग्राम भी सुने, यू कैन ट्यून इन ऑन सैटरडे बिटवीन 3:30 एंड 6 PM एंड ऑन संडेज बिटवीन 3 एंड 6 PM वेयर आई होस्ट माई ओन शो दिल से जरूर सुनिएगा, याद रखिएगा, दैट्स बिटवीन 3 एंड 6 पीएम सैटरडे एंड संडे. होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेयर एवर इट इज दैट यू आर. 35 मिनट्स पास्ट 1, टुडे इज द 9th ऑफ अक्टूबर 2026. नाउ दोज ऑफ यू हु वुड लाइक टू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया, चाहे वो अपने लिए आप लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इंडिया में, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ग्रह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो प्रेजेंटेड बाय माय स्क्वायर फीट. नाउ दिस हैपेंस टू बी द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. यहां पर आप लीडिंग डेवलपर्स से मिल सकते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल फ्रॉम बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली एनसीआर. और यहां आप तकरीबन 200 से ज्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, ऑल अंडर वन रूफ राइट हियर इन फ्रिस्को. ये एक्सपो होने जा रहा है ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th, दैट्स Tomorrow and the day after, यानी कि Saturday, Sunday को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक at the Hyatt Regency in Frisco. Entry भी free है, parking भी free है, so कोई excuse नहीं चलेगा. This is your perfect, you can find your perfect property in India and it's waiting for you at Graha Pravesh India Property Expo. Alright guys, अब चलते हैं हम अपने अगले segment की तरफ. Okay. इस सेगमेंट में आपको मिले जुले गाने सुनवाऊंगी, लेकिन हर एक गाने के बाद सुनाऊंगी आपको राहत फतेह अली खान साहब का गाना. एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 2 PM. अब आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या है. 1:36 से लेकर 2 PM तक हर दूसरा गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में होगा. अब आप पूछेंगे वो भला क्यों, और वो इसलिए बिकॉज उनका आने वाला है वर्ल्ड टूर 2026 टाइटल्ड वंस अपॉन अ टाइम, जिसमें वो अपने बेटे शाहजमान अली खान के साथ परफॉर्म करेंगे. कवाली भी होगी, सूफी सॉन्ग्स भी होंगे, बॉलीवुड हिट्स भी होंगे, टाइमलेस मेलोडीज भी होंगी, और ये इवेंट इसी महीने में हो रहा है, यानी कि फ्राइडे अक्टूबर 16 को. उसका देना चाहते हैं हम आपको एक अदद फ्री टिकट. जी हाँ, यू कैन विन अ फ्री टिकट प्रोवाइडेड आप 2 बजे तक ध्यान से सुनिए ये सेगमेंट, एंड देन आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाएंगे अगर आप 2 बजे तक हमारा ये सेगमेंट सुनते रहिए, जिसमें हर दूसरा गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में होगा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट सॉन्ग दैट इज फ्रॉम वन ऑफ हिज यू नो सॉन्ग लिस्ट, सो आप सुनिए, एंड देयर ऑल गोना बी हिट सॉन्ग्स. और अगर आप टिकट के विनर बने तो कड़ाई पाउंड पॉइंट से आप कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स मैं विनर को ही दे दूंगी. तो बस अब आपका काम इतना सा है कि आप सेगमेंट सुनिए, और से सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रोवाइडेड आप जीतना चाहते हैं राहत फतेह अली खान साहब के कॉन्सर्ट का टिकट.

बॉडीगार्ड फिल्म से लिया गया ये गाना करीना कपूर और सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था। आवाजें थी श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान साहब की। जैसे कि मैंने बताया, 2 बजे तक हम आपको सुनवाएंगे मिक्स्ड हिट्स और उनमें हर पहला दूसरा गाना राहत फतेह अली खान साहब का होगा। और फिर 1:55 पर पूछूंगी मैं आपसे एक सवाल जिसका जवाब आप तभी दे सकते हैं अगर आप नॉन स्टॉप सुनते रहिए 104.9 FM।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप लाल सिंह चड्ढा फिल्म से लिया गया ये गाना, जो करीना कपूर और आमिर खान पर पिक्चराइज किया गया था। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशर रेडियो। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात। भूलिएगा नहीं, 155 पर पूछूंगी मैं आपसे एक सवाल इस सेगमेंट के बारे में, जिसमें हर दूसरा गाना राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में है।

दबंग फिल्म के बाद हमने आपको दबंग फिल्म के गाने के बाद जो राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में था और सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा पे पिक्चराइज किया गया था, हमने आपको सुनवाया ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म दम लगा के हैशा। और ये गाना था मोनाली ठाकुर की आवाज़ में, भूमि और आयुष्मान खुराना पर पिक्चराइज किया गया था। आइए चलते हैं इस नेक्स्ट गाने की तरफ। नसीरुद्दीन शाह साहब पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म इश्किया से लिया गया है और एक बार फिर आवाज़ है राहत फतेह अली खान साहब की।

राहत फतेह अली खान साहब की कॉन्सर्ट का टिकट बस सब कुछ ही मिनटों में देंगे हम आपको ऑन एयर ऑन 104.9 एफएम. सो कीप लिसनिंग दिस नेक्स्ट ट्रैक टेकन फ्रॉम द फिल्म सिटी लाइट्स.

What an amazing song! पर अब वक्त हुआ है हमारे राहत फतेह अली खान साहब के टिकट गिव अवे का. Alright, so here is my question. इस आखिरी गाने को मिलाकर पिछले 20 मिनट में मैंने कितने गाने राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में प्ले किए और वो गाने कौन कौन से थे. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. इफ यू कैन टेल मी हाउ मेनी सॉन्ग्स एंड विच वर दोज सॉन्ग्स यू विल बी द विनर. 972-235-5555.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
5: लैपटॉप में।
4: इन्वेस्टमेंट?
5: गूगल ड्राइव।
4: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
5: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
4: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
6: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
6: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
8: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
6: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
9: Matlab crispy golden dosa?
6: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
9: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
8: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy together.
10: Ye last Diwali pehna tha. Ye Neha ki shaadi mein. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
11: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
12: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
10: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
12: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
6: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
13: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
14: It's the time to crack out.
15: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
16: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
17: लिया।
16: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
17: नहीं आया।
16: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
18: Visit www.sanadainc.com today.
19: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
20: Welcome back to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. I'm your host, Amreen Hasnat, and I will be with you till 2:30 p.m. Umeed karti hoon ki hamare tamam sunne wale jahan bhi hain, khairiyat se hain. This part of our show is brought to you by Tara Commercial Energy, and we have a special message for all the business owners. If you're looking for a smarter commercial energy solution, you've got to trust Tara Commercial Energy. Kyun? Because they have been serving the community since 2002 and taking care of all business owners, offering reliable service as well as competitive rates. Aur wo aapke business ke liye customized energy plans bhi bana kar dete hain. So aap unhe call kijiye 844-428-2808 or you can visit taraenergy.com. All right. Secondly, I've got to apologize to a lot of the people who called me to answer the question. Okay, from I believe it was 1:35, takriban 1:35, 1:37 par ye segment humne shuru kiya, and we concluded it at 2 p.m. jab ads shuru hue the, right? Aur maine ye kaha tha ki is time mein main play karungi back to, well, not back to back, but every other song will be that of Rahat Fateh Ali Khan sahab. ठीक है, आपने मुझे बताना है कि कितने गाने थे उनके जो मैंने प्ले किए और फिर उन गानों के नाम भी मुझे चाहिए थे. सो आई हैड अ कप एंड देयर वाज अ मिस्टेक दैट आई मेड. फॉर सम रीजन मुझे लगा कि मैंने 5 गाने प्ले किए हैं व्हेन दैट वाज नॉट ट्रू. आई एक्चुअली प्लेड ओनली 4 सॉन्ग्स दैट वर संग बाय राहत फतेह अली खान साहब. सो अगर आपका जवाब था 4 गाने एंड यू नो कि वो 4 गाने कौन से हैं, तो प्लीज कॉल मी बैक एंड द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी बैक विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू आंसर. सो इफ योर आंसर वॉज 4, प्लीज कॉल मी बैक 972-235-5555. याद रखिए, आपको उन 4 गानों के नाम भी देने होंगे. सो इट्स नॉट दैट नाउ यू नो कितने गाने थे. यू कैन विन. यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ दोज 4 सॉन्ग्स दैट वर प्लेड बिटवीन 1:37 एंड 2 p.m. Meanwhile, I'm going to go ahead and start playing our next song. Studio ka number to aapke paas hoga. Agar aapka jawab tha 4 gaane and you know those 4 songs, call me back. 972-235-5555.

मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म जब तक है जहां शाहरुख खान और कटरीना कैफ पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। 10 minutes past 2 ऑन दिस 9th of October 2026 कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष शर्मा जिन्होंने विन किया राहत फतेह अली खान साहब की कॉन्सर्ट का टिकट। सही जवाब दिया उन्होंने। 4 गाने प्ले किए थे मैंने पिछले 20 मिनट में। तेरी मेरी प्रेम कहानी फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड, देन तेरे मस्त मस्त दो नैन फ्रॉम द मूवी दबंग, दिल तो बच्चा है जी फ्रॉम द मूवी इश्किया, एंड कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है फ्रॉम द मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन। सो इस कॉन्टेस्ट में आई गेस इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट यू नो द आंसर्स, पर आपका लक भी अच्छा होना चाहिए कि आपकी कॉल थ्रू हो जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, आई होप यू एंजॉय द कॉन्सर्ट विच इज हैपनिंग ऑन October 16th।

जब से तेरे नैना शान की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी सांवरिया। रणबीर कपूर साहब की थी ये पहली मूवी एंड वॉजंट रियली दैट मच ऑफ अ हिट, लेकिन गाने सब बहुत ही बढ़िया थे। 15 मिनट्स, एक्चुअली 16 मिनट्स पास्ट टू ऑन दिस 9th of October। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की है बर्थडे, आई'd लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मारिया। आपको आज का दिन, आपका जन्मदिन, आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आज का दिन और पूरा साल, आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी हो। मौसम तो वैसे आज बहुत शानदार है। 87 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज द करंट टेम्परेचर। टुडेज हाई 88 एंड लो ऑफ 63 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लवली फ्राइडे आफ्टरनून। खाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं खाया? Well, can I make a recommendation? If you are around the Plano area, how about checking out Signature Restaurant? Now, they have some great nihari grills bhi unki bahut achhi hoti hain aur mujhe pasand hai personally unki fried chicken. It's really good. Paratha roll agar aapko pasand hai, well, you can check that out as well. And if you have an event coming up, well, they've got a great banquet hall, birthday, anniversary, special celebrations, anything. You can do it at Signature Restaurant in Plano, very conveniently located at the corner of Alma and Spring Creek. And if you want to get information about their restaurant, you can visit signaturecuisine.net.

प्यार टेकन फ्रॉम द पाकिस्तानी फिल्म बोलिए, आवाजें थी हरिका कियानी और आतिफ असलम की, और ये गाना मायरा खान और आतिफ असलम पर पिक्चराइज किया गया था। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनेशर रेडियो, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज अमरीन हसनात और ये मेरा रेगुलर सेगमेंट नहीं है। आप मुझे सुन सकते हैं हर सैटरडे और संडे को बिटवीन 3 and 6 PM। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत अच्छे, जिंदगी में खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी को लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारी शादी हो चुकी है।

आवारापन तू से लिया गया, ये गाना सुन रहे थे आप। होप यू एंजॉयड इट। अब जाने का टाइम आ गया है, जाते जाते आपको स्मार्ट रीच AI के बारे में बताना चाहूंगी, एंड दिस इज फॉर बिजनेस ओनर्स। नाउ यू सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल सी और क्लिक ऑन योर एड, इट्स अबाउट हाउ मेनी एक्चुअली बिकम योर कस्टमर्स। सो मीट स्मार्ट रीच AI, अ पन एशिया नेटवर्क प्रोडक्ट दैट हेल्प्स यू रीच पोटेंशियल लोकल कस्टमर्स इवन दोज विजिटिंग योर competitors across radio, digital, streaming TV, and online audio. Then you can measure what truly matters: calls, bookings, offer redemptions, and actual visits to your business. Visit smartreachai.us and turn local attention into customers. Aur ab is aakhri geet ke saath chahungi aapse ijazat. I hope you enjoyed today's segment. Bhuliyega nahi, aapse hogi kal mulaqat, same place same time, right here on 104.9 FM between 3 and 6 p.m. This is Ambreen Hasnat signing off. Aur haan, Saturday ko 3:30 se 6 o'clock, Sunday ko 3 to 6 p.m. Enjoy your weekend.

0: a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
1: I'm James Tallarico, and I approve this message.
2: Paid for by Tallarico for Texas.
3: Breakfast में क्या खाना है?
4: कीमा पराठा.
5: मम्मी, ऑमलेट पराठा.
6: बेटी, हलवा पूरी और तरकारी.
3: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
7: Signature Cuisine बनाएगा. Choose any delicious breakfast option. कीमा with पराठा, हलवा पूरी with तरकारी और ऑमलेट with पराठा. Served with a cup of hot कड़क चाय for only $8.99. Available during weekend breakfast hours at Signature Cuisine in Pleno. Weekend ka mood, garma garam desi food. Visit signaturecuisine.net.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: जहां तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ इरविंग में.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ 2:30 PM टिल 5 PM मंडे थ्रू फ्राइडे. मेरा और आपका साथ रहता है 972-235-5555 के थ्रू. आप भी रहते हैं मेरे साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. और आज है जी फ्राइडे. आप जानते हैं आपको यहाँ आफ्टरनून ड्राइव टाइम में मिलता है हर रोज एक नया फ्लेवर मेरे साथ यानी कि सुनहरी किरण के साथ. और आज का फ्लेवर तो बहुत ही स्पेशल होता है बिकॉज हम बिगिन करते हैं मिक्स पॉट से. मिक्स गानों का, नए और पुरानों का मैं गुलदस्ता लेके आती हूँ. पुराने गाने के किसी लव से ढूंढती हूँ कोई नया गाना और बनाते हैं हम अपना मिक्स पॉट. 3 बजे से 4:30 तक इट विल बी किड्स जंक्शन एवरी फ्राइडे जहां बच्चा पार्टी तैयार हो जाइए. आप ही की फरमाइश ली जाती है 972-235-5555 पे. और आज का दिन है बहुत स्पेशल. और वो क्या स्पेशलिटी है, 4:30 के बाद कुछ स्पेशल होने वाला है लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद. फिलहाल जल्दी से बिगिन करते हैं मिक्स पॉट और स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत ओल्डी के साथ.

जूल थीफ 1967 ये गाना आप सुन रहे थे, और जूल थीफ के बारे में तो कुछ बताने की आपको जरूरत है नहीं, कितनी बड़ी हिट थी ये फिल्म देवानंद साहब की, और साथ इस गाने में तनुजा नजर आई थी। अच्छा, रात अकेली है से मुझे एकदम से आजकल की तमन्ना भाटिया याद आ गई, और उन पे पिक्चराइज्ड ये गाना आज की रात मजा हुस्न का, तो यही आपके लिए प्ले कर रही हूँ। मिक्स पॉट का यही हमारा मजा है, पुराने गाने से कोई वर्ड लेके बनाते हैं नया गाना। और अगला गाना प्ले करते हुए यानी कि आज की रात बताती चलूं आपको कि अगर आप फाइनेंसेस में कुछ कंट्रोल अपना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या फिर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर यू आर लुकिंग फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग और यू आर मेकिंग सम स्ट्रैटेजीज फॉर दैट, CPA सुधीर पाइज माई टाइम इक्विटी इज हेयर टू हेल्प यू। mytimeequity.com पे आप लॉग ऑन कीजिए टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। देर इज नो हार्म, नेवर अ हार्म इन गिविंग अ कॉल एंड आस्किंग योर क्वेश्चन। दैट नंबर इज 469-702-1272 469-702-1272 इज दैट नंबर। दिस इज mytimeequity.com। यू ट्यून्ड इनटू मिक्स पॉट।

मिक्स स्पॉट में रात अकेली है से आज की रात तक हम पहुंचे हैं टू तमन्ना भाटिया, और अब आपके लिए एक गिव अवे लेकर आई हूं, क्योंकि मिक्स स्पॉट में एक गाना तो आपसे सुनना मुझे ज़रूरी होता है कि क्या गाना आपको याद आया ये पुराना गाना सुन के। और ये गिव अवे है जी फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि उनका मेन्यू चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्ज़ा लाइनअप। वेजिटेरियन लवर हों आप या चिकन लवर हों या सी फूड lover ho, now you have a different twist to these flavors, and that is of course Mexican inspired. Uske alawa Fun Pizza Kitchen pe milte hain aapko sare desi flavors, standard flavors, jo kuch bhi hai. funpizzakitchen.com is where you need to log on and find out more. Aur ab aapke liye ye $10 ka off hai on your next bill at Fun Pizza Kitchen in Frisco location. So agar aap ye jeetna chahte hain to ab main aapke liye gana play karne lagi hoon mix pot mein purana ek, aur us purane gaane se kisi word ko leke aap bataiye kaun sa aapko naya gana जहन में आया जो कि आप समझते हैं कि मैच करेगा मिक्स पॉट की थीम को। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो, और ये गाना है जी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स, दिस इज जब हम जवां होंगे।

सनी देओल और अमृता सिंह के करियर का आगाज हुआ था इस फिल्म से। जी हाँ, बेताब नाम था इस फिल्म का, 1983। और जावेद अख्तर साहब के करियर का, वो जो राइटिंग करियर था, उसके सोलो करियर का आगाज हुआ था। इट वॉज जावेद अख्तर्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट राइटिंग प्रोजेक्ट आफ्टर हिज स्प्लिट विद सलीम खान। और धर्मेंद्र जी ने जावेद अख्तर साहब को दिया था ये मौका कि आप लिखिए मेरे बेटे के लिए ये फिल्म, और क्या शानदार फिल्म लिखी। और बेताब तो खैर वन ऑफ दोज ब्लॉकबस्टर मूवीज में शुमार हुई। आप सबसे पूछा था जी कि फन पिज्जा किचन का ये $10 ऑफ आपको मिल सकता है फ्रिस्को लोकेशन से, अगर आप बताइए कि आपको इस गाने से कौन से गाना। बड़े मजे मजे के मुझे जवाब आए, जैसे कि किसी ने कहा कि यादें, फिल्म का यादें याद आता है, यादें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं, जो ऋतिक रोशन के ऊपर पिक्चराइज था। एक बड़ा मजे का जवाब आया, वो था जी जब हम जवां होंगे, से मुझे हल्कट जवानी करीना कपूर का याद आ रहा है। बिल्कुल Fair enough, word was absolutely there. So thank you so much for all your calls. और आज के जो हमारी lucky winner हैं, वो हैं मानिका शर्मा। मानिका, congratulations. दो दिन का हमें time दीजिए to give your name and number to Fun Pizza Kitchen in Frisco location. And then you will have 7 days to go and avail your $10 off your next bill. और आप तमाम लोग जिन्होंने participate किया, as always, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy. You need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
7: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
12: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
11: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
12: To solution?
13: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
14: Floors clean.
15: Check.
14: Windows clean.
15: Check.
14: Kitchen clean.
15: Check.
14: Air ducts clean.
15: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
16: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
21: A.R. Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and 2-time Academy Award winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Kids Junction. ये हो गया है जी स्पेशल हमारा सेगमेंट शुरू. Every Friday 3 PM till 4:30 PM I bring you Kids Junction on afternoon drive time. And Bacha Party, you have this opportunity of giving me a call live and request a song from me. मेरी इतनी request है, make sure it is a Bollywood or a Hindi song. And while you're talking to me, try to be off speaker so that I can hear you loud and clear. No problems over there. Bas itni si request meri hai. 972-235-5555 is the number to the studio. You can give me a call. Or while I will be waiting for those calls and playing some beautiful songs for you, let me tell you and the parents, of course, who are listening to me, ki agar aap crave kar rahe hain something delicious or Indian food ki craving ho rahi hai aaj, bachon ko kuch maze ka khilana hai, lekin aaj cooking ka bilkul dil nahi hai, ya weekend pe ya jo bhi koi bachon ke friends aa rahe hain, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो फिर यू नो तंदूरी फ्लेम गार्लैंड में इज अ परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू गो, ऑल ऑफ यू टू गो एंड एंजॉय. बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का, दाल मखनी, मतलब हर तरह का खाना आपको वहां मिलेगा. और जो सबसे मजे की बात है वो ये कि बिल्कुल घर जैसा फ्लेवर आपको मिलने वाला है. और एक स्पेशल ऑफर जो उनकी मंडे थ्रू थर्सडे वैलिड है, दैट इज द फ्लेम आवर. ऑन मंडे थ्रू थर्सडे यानी कि वीक डेज कंप्लीटली, आप 5 बजे से 8 बजे तक अगर आप वहां जाएंगे एंड यू विल ऑर्डर 2 entrees, then you will get an appetizer absolutely free. Complimentary appetizer aapko milega, but that is from Monday through Friday. So bring your appetite, bring your friends, and make a dinner, your dinner, a little more delicious today or any day with Tandoori Flame Restaurant. TandooriFlameTX.com is where you need to log on to find out more about them.

0: And PMJ Jewels, they are now open for you in Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Ji haan, diamond jewelry aapko khareedni hai, gold jewelry khareedni hai, you are interested in bridal collection or you just want to celebrate something very important or pamper yourself. PMJ Jewels, jo ke Main Street Frisco pe located hai, every story, every piece there tells a story. Aur aapki story ka hissa ban jata hai. So PMJ Jewels visit kijiye. Main Street in Frisco. अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आकर Amira की रिक्वेस्ट लाइंड अप है फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम. राइट आफ्टर दिस ब्रेक.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
2: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danew Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
3: दिल की बात किससे कहें?
4: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
5: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
6: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
7: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
8: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
7: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
8: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
9: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
6: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
9: Barista House, richness of biryani bliss.
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag.
11: और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस एंड एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
15: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
16: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shehzaman Ali Khan ek hi stage par.
15: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
16: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
15: Tickets on Ticketmaster and Suleha.com.
17: Jag ghumeya thare jaisa na koi.
18: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

104.9 FM फानेजिया रेडियो पे आप सुन रहे हैं किड्स जंक्शन राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और अमायरा की रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले किया था. मैंने पूछा उनसे, शी इज अ थर्ड ग्रेडर, कि व्हाई यू रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग. तो अभी अभी अमायरा ने कभी खुशी कभी गम है देखी फिल्म, और उसमें ये गाना रहा उनका फेवरेट. सो आई एम सो ग्लैड अमायरा यू वॉच्ड कभी खुशी कभी गम एंड यू लाइक्ड द मूवी एज वेल एज द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी. सो दैट इज हाउ वी कनेक्ट आर यंगर जनरेशन, आर kids, our youth, with these classic films. So with that, and good job mom for doing that for Amira. Aur aap sab bhi zarur apne bachon ko ye classics dikhaiye taki wo enjoy karein ki classic jo Bollywood ki movies hoti thi jab kabhi kisi zamane mein bana karti thi to kaisi bana karti thi. Okay, now we have another request lined up. Jasmine, this one is going out to you, taken from the movie Sonu ke Titu ki Sweetie.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
7: ओ हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
8: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
10: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
8: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care, urgent care services ke साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
11: एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली It's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
8: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com.
12: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
11: कितनी लंबी लिस्ट है?
12: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
11: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
13: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
2: अजी सुनते हो?
14: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
15: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
16: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।
17: कितने आदमी थे?
18: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: वेलकम बैक किड्स जंक्शन पे 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे मैं आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ. और अब वक्त आ चला है जी आपके लिए एज प्रॉमिस्ड एक गिव अवे लाने का. राहत फतेह अली खान साहब आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट. तो पहले आपको वो डिटेल्स दे दी जाए और फिर आपको बताऊंगी कि आप जीत सकते हैं ये एक अमेजिंग गिव अवे. अच्छा जी, राहत फतेह अली खान साहब विल बी जॉइंड बाय हिज सन शाहजमान अली खान. दिस इज वंस अपॉन अ टाइम World Tour 2026. This will be happening on Friday, October the 16th at 8:30 PM. Comerica Center Frisco में हो रहा है ये. और कव्वाली, सूफी सॉन्ग्स, बॉलीवुड हिट्स, मतलब टाइमलेस मेलोडीज आपको इस शो में सुनने को मिलेंगी. सो डोंट फॉरगेट टू बाय योर टिकट्स. दे आर अवेलेबल एट यू नो टिकट मास्टर. तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलती हूँ कि आप जो है वो कैसे खरीद सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं ये एक गिव अवे जो मेरे पास है. सो बच्चा पार्टी, दिस वन गिव अवे, आई हैव ओनली वन टिकट टू गिव अवे. So you can participate and win that ticket for your mom or your dad. And then, you know, they can buy one more and then they can go as a couple and enjoy it. Ya phir, whatever you guys want to do as a family. So, but I have only one ticket to give away. So it is Rahat Fateh Ali Khan's concert. So tell me, one song of Bollywood that you love of Rahat Fateh Ali Khan. You can consult your mom, consult your dad, give me a call and tell me that song. 972-235-5555 is the number to this studio. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: My name is Soha.
0: All right, Soha, tell me what Rahat's song do you think you like the best? Okay, guys, you have to speed up and tell me the answer, and I will probably take it off air so that we have less distractions. Let's move on to this song, and I will be taking your calls for this giveaway.

गिव अवे लेकर आई थी आपके लिए, और गिव अवे था जी राहत फतेह अली खान साहब के कॉन्सर्ट का, और आप बिल्कुल इस कॉन्सर्ट को मिस नहीं करना चाहते, ये मुझे फोन कॉल से अंदाजा हो गया विद द वे आई गॉट द फोन कॉल्स. लॉट्स ऑफ फोन कॉल्स, लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स रिकमेंडेड बाय राहत फतेह अली खान. सो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दोज कॉल्स. एंड टू मी ऑल ऑफ यू आर विनर्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू पिक वन विनर एंड दैट आई डोंट डू. The sequence in which you have called, I have assigned that sequence a number and we've put that in a math formula and I've gotten one number and that number is the winner. And that name is Ankita Akundi. Ankita, congratulations. You have won this one Rahat Fateh Ali Khan concerts giveaway. And if you're listening to me, please give me a call back and I will be able to tell you how and where you can avail your ticket. And to all of you who have mentioned your favorite songs and participated, thank you guys. Thank you. Thank you so much. I'm still here taking your requests till 4:30 p.m. I have a lot of requests lined up. So bear with me. I'm going to play them one by one.

ऑलराइट, गानों की रिक्वेस्ट लाइन अप है जी। एक बार फिर बताते चलते हैं कि हमारे लकी विनर कौन हैं, और लकी विनर हमारी हैं, अभी हमने उनका नाम अनाउंस किया था, दैट इज अंकिता, और अंकिता एंड हर डैड विल बी गोइंग टू कलेक्ट द टिकट। आनंद अखुंडी विल बी कलेक्टिंग द टिकट। दिस टिकट वॉज ब्रॉट टू यू, दिस राहत फतेह अली खान लाइव कॉन्सर्ट टिकट वॉज ब्रॉट टू यू बाई कढ़ाई पॉइंट। दे आर लोकेटेड इन प्लेनो। अगर आपने कढ़ाई पॉइंट विजिट नहीं किया तो गाइज यू हैव टू visit it. You are going to absolutely love their food. And we have special thanks to give to Nadeem Bhai and Sharjeel Sahab for bringing us this amazing concert giveaway, and to all of you this opportunity to attend your Rahat Fateh Ali Khan concert. So do enjoy and buy your tickets.

0: With that, we are heading on to a short break. लेकिन ब्रेक पे जाते हुए मुझे आपको देनी है एक बहुत ही important information regarding buying a home. If you are dreaming of owning a home in India, या फिर आप ढूंढ मतलब you know you want to get property investment, next smart property आप अपनी खरीदना चाहते हैं, then don't miss this event that is coming up for you. Grah Pravesh India Property Expo, presented by My Square Feet. The biggest Indian property expo in Frisco. आपके पास ये चांस है टू मीट द डेवलपर्स फ्रॉम बेंगलुरु इन हैदराबाद इन चेन्नई मुंबई पुणे दिल्ली और 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं ये ऑल अंडर वन रूफ. तो चाहे आप यू लुकिंग टू बाय अ ड्रीम होम सेकेंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डू विजिट देयर एक्सपो. जॉइन देम ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th 10 a.m. टिल 8 p.m. एट हयात रीजेंसी फ्रिस्को. पार्किंग बिल्कुल फ्री है जी. अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए. फैमिली फ्रेंड्स और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ आइए. दिस इज ग्रह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. योर परफेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया कुड बी वेटिंग फॉर यू. डोंट मिस इट.
1: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
2: क्या ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है. लेकिन व्हाट इफ में मत अटके एनुअल चेकअप करवाइए.
3: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
4: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया.
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम ऑटो हेल्थ और बिजनेस एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स मोटेल्स गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
8: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
9: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
10: प्रभु डिस्काउंट भी मिलेगा?
9: ऑफ कोर्स. फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
3: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को. इंडियन अटायर फ्रिस्को योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन. What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
11: Every home has a story. Let's create yours together.
12: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
0: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
12: Kaise?
0: Page 3 eatery?
12: No, not another restaurant again.
0: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
12: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं.
13: पेज 3 ईटरी. ईट सिप गॉसिप रिपीट.
14: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
15: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
16: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
15: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज
16: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: बिंदास बोलो. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
8: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर.
18: द दिल ऑफ डैलस हार्ट टू हार्ट.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
11: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
10: When is it?
11: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
10: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
12: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
13: Ladies, to mark her 15 years of service to the DFW community, Dr. Madhuri Gudipati, board-certified OBGYN, is moving to a new office location in West Plano, conveniently located on Dallas Parkway in Windhaven. Visit yourobgynspecialist.com or call 972-867-7500 for an appointment today. Dr. Madhuri, helping women lead healthy lives.
14: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
15: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
14: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
15: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
16: अरे यार, घर मिल गया।
17: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
18: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
17: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
18: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
19: ये तारा वो तारा हर तारा।
18: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
20: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897। और विजिट astrologer.com.
9: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान.
21: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
9: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
21: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
9: Tickets on Ticketmaster and Solekha.com.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonasia, 104.9 FM.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart. And thank God it's Friday, दोस्तों. How are you guys doing on this amazing Friday evening? और होता है ना कि something has come early and that is the weekend vibe. The weekend is early because it is Friday. और thank God it's Friday. और पता है ना वो बदल गया. मौसम की बात कर रही हूँ दोस्तों. क्या बदला है मौसम. And the मौसम is totally awesome. बाहर निकलने में वो भट्टी फील नहीं आ रही है, वो अवन फील नहीं आ रही है. एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग बीइंग आउटसाइड इफ यू आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग्स इन द इवनिंग्स और राइट आउट एंड अबाउट राइट नाउ. व्हाई नॉट, इट इज सुपर डुपर कूल. कुछ तो बदला है, बदली सी हवा है.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: Buying home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
8: शॉपिंग बिल्कुल, पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही दो से तीन ऑप्शंस।
9: आई विल गिव यू द लेटेस्ट डेस्टिनेशन।
10: इंट्रोड्यूसिंग पूजा'स ट्रेंड्स, लहंगाज, कोऑर्ड सेट्स, फ्यूजन वेयर, शराराज और ज्वेलरी, प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, ग्रैंड ओपनिंग सेल, फ्लैट 15% ऑफ। विजिट 10202 कोइट रोड, स्वीट 400 फ्रिस्को। कॉल 214-457-4897। पूजा'स ट्रेंड्स, योर ट्रेंड, योर स्टाइल।
11: Floors clean.
12: Check.
11: Windows clean.
12: Check.
11: Kitchen clean.
12: Check.
11: Air ducts clean.
12: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
13: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभाल लेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
1: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
2: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
18: Next question.
2: Bride ki entry song.
18: Yaad nahi.
11: बफे में क्या था?
18: चना पापड़ी चाट, बिहारी कबाब, दिल्ली निहारी, अचारी चिकन, मटन बिरयानी।
10: शादी में बाकी डिटेल्स भूल सकते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं। गैदरिंग्स 50 की हो या 500 गेस्ट के लिए, चूज सिग्नेचर कुजीन्स, कस्टमाइज्ड केटरिंग, लाइव कुकिंग स्टेशंस एंड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल 9729055449। सिग्नेचर कुजीन, द टेस्ट योर गेस्ट्स विल रिमेंबर।
9: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
19: नमस्ते, वेलकम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, केमो नाचो केम छो। मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता पान से, आज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ दिस अमेजिंग शो। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे को ही आता है तो ऑफ कोर्स इट इज फ्राइडे। और तो बोलना बनता है, बिकॉज द वाइब्स जस्ट ड्रॉप इन बिफोर द वीकेंड, आज ही की शाम से हो जाता है। लेकिन शुरुआत आज बस उन्हें याद करके करती हूँ जो हमारे बॉलीवुड हमें हमारा साथ छोड़कर 8th of October कल चले गए। बॉलीवुड में जैसे कुछ कलाकार होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, अपना किरदार को जीते हैं, उनमें से एक थे नाना पाटेकर। परिंदा की इंटेंसिटी, क्रांति वीर के पावरफुल डायलॉग्स, अब तक छप्पन का फियरलेस अंदाज और वेलकम का अनफॉरगेटेबल उदय शेट्टी। वी विल मिस यू सो मच नाना पाटेकर। उनकी आवाज़ में एक अलग ही दम है, उनके डायलॉग्स में एक अलग ही सच्चाई। नाना पाटेकर ने हमें दिखाया कि एक ग्रेट एक्टर को सुपरस्टार बनने के लिए ग्लैमर नहीं, सिर्फ अपनी कला पर विश्वास करना चाहिए। आज हम सल्यूट करते हैं उन्हें, बहुत ही बेमिसाल कलाकार को। नाना पाटेकर ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75 इन गोवा। रिमेंबरिंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम दिस अमेजिंग मूवी ऑफ विच ही वॉज पार्ट ऑफ, विच वॉज परिंदा।

अब हो गए हैं जुदा नाना पाटेकर साहब, लेकिन वो चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ और उनका किरदार हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। एंड एक गाना है जो उन पे पिक्चराइज हुआ था, एंड वन ऑफ माय लिसनर्स जैस्मिन, थैंक यू फॉर दैट, दिस वन वॉर्म डेडिकेशन टू नाना पाटेकर। बहुत ही अनोखा उन्होंने छाप छोड़ा है बॉलीवुड में, एंड वी विल डेफिनेटली जब भी नाना पाटेकर याद आते हैं, उनकी बुलंद आवाज़, उनके किरदार जिसमें वो घुस जाते थे कम्प्लीटली, ही वुड ओन इट एंड ही हैज़ डन सम अमेजिंग वर्क विच स्टेज बिहाइंड।

0: देख रही मां, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।
1: मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।
2: तेरा मेरा रिश्ता फुर्राना फ्रॉम द फिल्म आवारापन, एंड इमरान हाशमी कम्स बैक अगेन विद आवारापन 2, एंड दी सॉन्ग्स आर स्टिल ट्रेंडिंग। 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, जस्ट बिकॉज यू एंड वी आर पार्टनर्स एंड पार्टनर्स विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। खाने के लिए सबकी बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट है, बटर चिकन बिरयानी पनीर टिक्का और दाल मखनी साउंड्स लाइक योर काइंड ऑफ डिनर या अ मील विच यू जस्ट फील सो यम्ड अबाउट। हेड टू तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड, एंड नाउ देयर इज अनदर रीजन टू गो, फ्लेम आवर। जी, उनका एक फ्लेम आवर है मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 8 PM, यानी कि जैसे मेरा शो होता है 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, उनका फ्लेम आवर भी 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। यू कैन ऑर्डर एनी 2 एंट्रे एंड रिसीव 1 कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर। यम्मी, विजिट tandooriflametx.com फॉर मोर डिटेल। और यहाँ पर आप इस ऑफर को तौबा तौबा वाह बोल ही सकते हैं, राइट?

सुपर बैड न्यूज फिल्म से लिया गया विकी कौशल इस गाने में, तृप्ति डिमरी भी उनके साथ, एंड तौबा तौबा इज दैट लवली सॉन्ग विच यू वर लिसनिंग टू. पता है अभी हम तो इतने सोशल मीडिया के पीछे ही रहते हैं और हमारे स्टार्स रियली प्ले अलोंग विद आवर इमोशंस और प्ले विद आवर इमोशंस एंड वी प्ले अलोंग विद देयर पोस्ट. तो अभी आलिया भट्ट हाल ही में एक पिक्चर शेयर की फ्रॉम अ गर्ल्स हॉलीडे इन मलोका स्पेन, कैप्शनिंग देम आवर जी लेजरा. ओ माई गॉड, फैंस तो तुरंत ही सोचने लगे, स्पेक्यूलेट करने लगे, दिस वॉज अ हिंट एट द लॉन्ग डिलेड जी लेजरा फिल्म जो ओरिजिनली इंस्पायर अनाउंस हुई थी प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट के साथ. ओ माई गॉड, वी आर सो मच वेटिंग फॉर दिस फिल्म. But there's no official announcement that the film is restarting. But एक Instagram caption से पूरे fans की excitement rocket signs देने लगी. आलिया ने लिखा जीले जरा और fans कहने लगे please tell us the film is happening. लेकिन अभी ये सिर्फ speculation है. Personally, सच में मुझे पूछे तो I would love another female friendship road trip movie. आपको how would you say? वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो हमारे पहली बार में ही हिट कर गई हमारे दिलों को, द बॉयज ट्रिप, वी डेफिनेटली नीड टू डू दैट गर्ल्स ट्रिप टू मेक इट रियल एंड द रियल फ्रेंडशिप. क्योंकि सेम मेकर्स अगर बनाएंगे तो टोटली दिल को छूने वाला ही होगा ना. सो ये गाना यादों की तरफ है पर चाहत यही है फिल्म जल्दी बन जाए यार.

जो भी हो सो हो 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं, जो भी हो सो हो, टेंशन नहीं लेने का। कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाए ना तो हो जाता है, पर जो भी हो सो हो इसलिए टेंशन नहीं लेने का क्योंकि हमारे साथ हमारे हेल्प के लिए हैं अटर्नी उमर ख्वाजा, यू नो। और उमर ख्वाजा साहब बहुत ही खास हैं क्योंकि जब हम इंजर्ड हो जाते हैं कोई कार ट्रक एक्सीडेंट में या फिर स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट में, स्ट्रेस हमारी अलग होती है कि यार हाउ डू वी यू नो गेट ऑल द रीइंबर्समेंट्स एंड हाउ डू वी गो थ्रू आर ट्रीटमेंट्स एट्सेट्रा। फोकस ऑन हीलिंग वाइल अटर्नी उमर ख्वाजा फाइट्स फॉर यू एंड यू पे नथिंग अनलेस ही विंस। फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046। यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप अटर्नी उमर ख्वाजा को। आप 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं और वहाँ यहाँ हर जगह बस इंफॉर्मेशंस की भरमार होती है। Where are you heading to? Wherever, this next song just for you.

0: एक कोक स्टूडियो का ये पेशकश है, ये बहुत ही खूबसूरत। दिस इज अ पॉपुलर इंडियन आर्टिस्ट अनूप जैन, जिनकी ये आपने पेशकश सुनी। वेरी वेरी ब्यूटिफुली डन। एंड यू नो, फॉर सेंचुरीज पोएट्स हैव गिवन वॉइस टू ह्यूमन अ हार्ट, शेपिंग द लैंग्वेज ऑफ लव। और ये वाला जो गाना है, इसका नाम है अर्ज किया है। इट कैरीज दैट लेगेसी फॉरवर्ड एज एन इंटीमेट ट्रिब्यूट रूटेड इन इंडियाज़ पोएटिक ट्रेडिशन, एम्ब्रेसिंग द अनगार्डेड ऑनेस्टी ऑफ स्पीकिंग योर हार्ट एज इट्स अ हेल्म इज इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट, जो मैंने कहा अनूप जैन। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एजा रेडियो। गाने तो हैं, लेकिन बॉलीवुड बज़ से भी कुछ बज़ इन्फॉर्मेशन आई है, जो हाल ही में कल या परसों ही अभिषेक बच्चन ने बताया शाहरुख खान के लिए। क्या बताया होगा, इस गाने के बाद बताती हूँ आपको।
1: पापा मम्मी के लिए

from the movie Stree 2, Tamanna Bhatia, Rajkumar Rao in this song. आज की रात सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजा रेडियो. बॉलीवुड बज में मैं बता दूँ, जो मैं बता रही थी ना, अभिषेक बच्चन ने कुछ शाहरुख खान के लिए कहा, तो उन्होंने अभी हाल ही में बताया, ऐसे रिवील किया था 7 अक्टूबर को, कि शाहरुख खान ना उनके बड़े भाई जैसे हैं थ्रू आउट हिज करियर. और वो अभिषेक बच्चन क्रिकेट खेलने जाते हैं, संडे एक संडे क्रिकेट टीम हुआ करता है हमारे बॉलीवुड का, विच इज़ वेरी फेमस. बहुत जगह इस क्रिकेट टीम को यू नो मेंशन किया गया है, उसमें उदय चोपड़ा, ऋतिक रोशन और बहुत सारे स्टार्स क्रिकेट खेलते हैं, और कभी कभी उसमें शाहरुख खान भी आते हैं. तो अभिषेक बता रहे थे कि उस वो संडे क्रिकेट टीम में एक दिन शाहरुख खान आए थे, तो ऐसी एक फिलॉसफी उन्होंने दी कि पता है, योर फेवरेट फिल्म शुड बी द वन यू आर करंटली वर्किंग ऑन. और अभी वैसे किंग में काम कर रहे हैं अभिषेक बच्चन विद शाहरुख खान, एंड किंग जो आने वाली है December 24th, उसके लिए बहुत इंतज़ार है. इट विल बी सच एन अमेजिंग फिल्म. अभिषेक बच्चन उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम दैट वे. पर इमेजिन संडे क्रिकेट मैच है, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, और आज ही इज़ रिमेम्बरिंग दैट लाइफ लेसन कि आपका वही फेवरेट प्रोजेक्ट होना चाहिए जिस पे आप आज काम कर रहे हो. पास्ट इज पास, वो बीत गई सो बात गई, पर आज जो आप काम कर रहे हो दैट शुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वॉट अ लवली रिमाइंडर, राइट, कि प्रेजेंट इज द बेस्ट. यार हम कहाँ पास्ट में घुसे रहते हैं और पास्ट के यादों में आज को छोड़ देते हैं. वो पास्ट में रहना चाहिए. आज जो है ना, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट.

0: Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
1: I'm James Tallarico, and I approve this message.
0: Paid for by Tallarico for Texas.
2: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai, and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency, Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
3: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
4: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 टू 8 पीएम ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
6: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
5: When is it?
6: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
5: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
7: Agar main kahun tumhara cholesterol 300 hai aur blood pressure 160 to kya kahoge?
5: Kya?
8: Wake up!
5: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है. लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए.
9: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com.
10: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
11: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
10: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
11: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
12: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
12: Barista House, richness of biryani bliss.
13: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
14: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
15: Welcome back. स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजा रेडियो पर. मैं हूँ आपकी होस्ट नमिता पांसाज, स्प्रेड फ्रॉम द हार्ट विद माय शो. थैंक गॉड तो बोलेंगे ना. ओ माय गॉड, मैं एक और बात के लिए थैंक गॉड बोलूंगी. फाइनली वो मूवी जो बहुत दिन से रणबीर कपूर कंप्लीटली गायब हो गए हैं फिल्मों की दुनिया से, फॉर सम रीजन आई रियली फील दिस गोज फिनिशेज एंड देन ही कम्स आउट एंड डज सम मोर मूवीज बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे हैं. वैसे म्यूजिक भी लॉन्च हो चुका है. रामायण फिल्म आ रही है रणबीर कपूर की, द माइथोलॉजिकल एपिक, डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, एंड उसका रिलीज डेट इज नवंबर 4th. इट्स अराउंड दिवाली. दिवाली बस अभी आने ही वाली है. अक्टूबर जाने ही वाला है, दिवाली आने ही वाली है. एंड देयर यू गो, द सॉन्ग दैट हैज बीन रिलीज्ड.

was the song from Ramayana that is going to be released around Diwali. पता है वैसे तो बहुत नाज है, बहुत happiness के साथ मैं बोल रही हूँ कि I am a realtor with Keller Williams Realty now. And if you are planning to buy, sell or move into your next home and you want some good advice and market knowledge, I can be your personal guide. I am Navneeta Khemka and I always feel and believe that every home has a story and let us create yours together. Call kijiye mujhe. Lekin fun fact batana chahti hu around homes, and these are the very very exciting ones. If you have never known this, this might just tang se aapki ek batti chal jayegi. But the Americans once ordered their homes from a catalog. Really, 1908 or 1940 ke beech mein Sears sold house kits by mail order. बायर्स डिज़ाइंस चूज़ करते थे, बिल्डिंग मटेरियल चूज़ करते थे और रेल रोड से वो उनके घर के सामने आके जहाँ घर बनना है वहाँ आके डिलीवर होता था और फिर वो घर असेंबल होता था ऑन द लाइन 1908 से 1940 से. इमेजिन आप घर अपने कपड़े ऑर्डर करते हैं, ग्रोसरीज ऑर्डर करते हैं डिलीवरी के लिए, बट वुड यू एवर ऑर्डर योर होम फ्रॉम अ कैटलॉग? अब तो हम सोच ही नहीं सकते यार, कैटलॉग खोल के बैठेंगे और अपना होम डिलीवरी करवाएंगे. वैसे अमेज़न हर कुछ कर रहा है, कर ही सकता है यार होम डिलीवर, व्हाट से. वाज़न्ट इट अ फन स्वीट फैक्ट? सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो मेरे साथ, और यहाँ पर कुछ तो गाने हैं, कुछ बनी हुई हूँ आपकी जीनी. जो घुमा का क्या सुनेंगे आप, फोन उठाइए, नंबर दबाइए. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. और यस, दिस जीनी कैन प्ले योर सॉन्ग राइट हियर राइट नाउ.

रीत रे 104.9 FM फन एजा रे जो सुन रहे हैं, और ये तो दिल की बात है, राइट? फरीत रे लग जाती है, जैसे मैंने कहा कि बनी हुई हूँ जीनी और कह रही हूँ जो हुकुमा का क्या सुनेंगे आप। वैसे सफ़ी की रिक्वेस्ट आ गई है मूवी फने खां से, और मैं वो तो प्लेन करूँगी, लेकिन आपको पता है फन एजा नेटवर्क बहुत ही खास प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। दे ब्रिंग इट्स मीडिया एक्सपर्टाइज टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया, फ्रॉम एंगेजिंग रील्स एंड ग्राफिक्स टू कैप्शंस, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्पलीफिकेशन थ्रू फन एजा रेडियो। मतलब ये क्या बोले जा रही हूँ मैं, दुनिया आजकल सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। आप देखें ना, आपका स्मार्टफोन कितना आपके साथ रहता है और कितने सारे रील्स आप बस देखते ही रहते हैं, देखते रहते हैं, और उन बीचों में कुछ ना कुछ एड्स आ जाते हैं जो आपके बिजनेस को कहीं से कहीं पहुँचा सकता है। और ये फन एजा रेडियो डिजिटल और कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स की सहायता से रिलेटिव मीडिया गिव्स यू योर ब्रांड अ कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन। अगर आपका बिजनेस है तो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें। फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 4694243188 टू बुक योर कंटेंट ऑडिट टुडे। रिलेटिव मीडिया पावर्ड बाय फन एजा नेटवर्क। सुन रहे आप और मैं फन एजा रेडियो पर

0: एक बार
1: आई एम सो सॉरी 104.9 FM पानी शरीफ। ये जो शफी आपकी जो आपका जो गाना ना एक गाने से दूसरे गाने में मिल गया बच्चा, मैं आफ्टर द ब्रेक विल गेट टू दैट सॉन्ग विच यू हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम मी 104.9 FM Fanisha Radio with some technical glitch that happened and here we are back on track. This one for you.

0: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
3: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
0: Every home has a story. Let's create yours together.
4: शॉपिंग बिल्कुल,
5: पर कहाँ? फेस्टिव लुक्स के लिए वही दो से तीन ऑप्शंस?
6: ऑप्शंस? आई विल गिव यू द लेटेस्ट डेस्टिनेशन।
7: इंट्रोड्यूसिंग पूजा'स ट्रेंड्स, लहंगाज, कोऑर्ड सेट्स, फ्यूजन वेयर, शराराज और ज्वेलरी, प्रीमियम क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस, ग्रैंड ओपनिंग सेल, फ्लैट 15% ऑफ। विजिट 10202 कोइट रोड, स्वीट 400 फ्रिस्को। कॉल 214-457-4897। पूजा'स ट्रेंड्स, योर ट्रेंड, योर स्टाइल।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
11: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
17: राहत फतेह अली खान
18: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
16: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
18: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
16: Tickets on Ticketmaster and Sulekha.com.
19: Jag ghumya thare jaisa na koi.
20: वेलकम बैक दोस्तों, 104.9 FM फन एजा रेडियो सुन रहे मेरे साथ, मैं आपकी होस्ट नवनीता। और ये जो शाम का वक्त है ये आपका है 5 से 8 स्ट्रीट फ्रॉम बिहार।

प्रिशा इज टर्निंग 4 टुमारो. वाओ, ये क्या कहा मैंने. यस, प्रिशाज मॉम प्रिया मिश्रा ने कॉल किया. उन्होंने अपनी बेटी के लिए गाना रिक्वेस्ट किया है जिन्हें वो विश करना चाहती हैं हमारी द्वारा फन एजा के टीम की तरफ से. 4-year-old प्रीशा, अगर आप सुन रही हैं रेडियो हमारा एंड आप ऑलरेडी ये छाट चुकी हैं, यू हैव टोटली अराइव्ड बिकॉज यू आर लिसनिंग टू फन एजा रेडियो एंड योर मॉम विशेज यू. ये इतिहास में लिखा जाएगा जब आप कल बड़ी होंगी और बताया जाएगा आपको कि आप जब 4 साल की हुई थी ना तो रेडियो पर आपका आपको विश किया गया था ऑन दिस शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे विथ आरजे नवनीता. हाउ ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच फॉर यू नो मेकिंग अस योर जरिया टू कम्युनिकेट सम ब्यूटिफुल मैसेजेस. प्रीशा, वेरी हैप्पी बर्थडे डियर प्रीशा. योर 4-year-old सेलिब्रेशन नीड्स टू बी रॉकिंग फॉर श्योर.

फुल, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी फोर्थ बर्थडे प्रीशा. यार मेरे जीरो रमास तो पूरे मेरे गल हिंदी हिंदी बोल के किरदार बन गए, कैसा बताओ. सो मैं बताती हूँ, आज बहुत भावुक हो रहे थे. कहते हैं पता है नवनीता, शाम को जब मैं घूमने निकला ना तो दिखा दुकानों पर लगे जितने भी बोर्ड दिखाई दिए उसमें लिखे हुए और बोर्ड में एक आधा शब्द तो अंग्रेजी का होता ही था, ज़रूरी था, हिंदी में तो कुछ लिखा ही नहीं था. जैसे संजय स्वीट स्टेशन, अजय मेडिकल स्टोर, यू नो विजय फोटो कॉपी सेंटर, आई मीन बाबुल हेयर कटिंग. यार हर जगह अंग्रेजी जोड़ दिया है लोगों ने. गणेश लॉज, ज्योतिषी में भी ज्योतिष हॉस्पिटल. अच्छा मैंने बोला दो ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिष हॉस्पिटल है. बट जस्ट इमेजिन नवनीता जी, बट नहीं बट इमेजिन नवनीता जी, हर जगह नवनी या अंग्रेजी जुड़ा हुआ है. पर पता है मन बहुत खुश हुआ, मतलब इतना खुश मैं क्या बताऊँ. एक बोर्ड था जो दिल बाग बाग हो गया. मैं बोली क्या लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था झीलराम? तो कहते हैं लिखा था देसी शराब की दुकान, प्योर हिंदी में. उसमें मैं बस घुस गया. दिल को जो शांति मिली है ना, एक ही दुकान है जो हमारी हिंदी भाषा के इतने ऊंचे में रखा हुआ है. बार एंड होटल, ऐसा कोई लिखता है? सीरियसली सीरियसली, क्या हिंदी पाया है आपने. कभी कभी सोचती हूँ कहाँ से ये हमारे झीलू राम ऐसे हैं, नो आइडिया. शुद्ध देसी दुकान में गए हैं.

ब्यूटिफुल, कितना खूबसूरत गाना है, राइट? 104.9 FM फन एजा रेडियो सुन रहे थे आप, और हैं आप द करंट, इट्स नॉट थे, अभी तक था नहीं हुआ है शो, था हो जाएगा मेरा, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एट 8 o'clock आफ्टर दैट. पर पता है आपको, वरुण धवन की तरफ से एक ब्रांड न्यू न्यूज़ आई है विच इज़ इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए. He is investing, and you know, he is investing into a very interesting venture. Better Nutrition, a food company that was featured on Shark Tank India. तो वो क्या कर रहे हैं, कंपनी के साथ डेवलप कर रहे हैं अपना एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी इंटू अ फार्म ग्रोइंग मोर न्यूट्रिशियस क्रॉप्स. या बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधु इज अनदर एम्बेसडर फॉर द ब्रांड. सो बॉलीवुड स्टार्स इन्वेस्ट करते हैं रेस्टोरेंट्स में, रियल इस्टेट में, फैशन ब्यूटी ब्रांड्स में, लेकिन वरुण धवन इज गोइंग बैक टू द रूट्स, एक्चुअली लिटरली गोइंग बैक टू द रूट्स, फ्रॉम डांसिंग ऑन स्क्रीन टू ग्रोइंग न्यूट्रिशियस फूड ऑन हिज फार्म. दैट्स व्हाट आई कॉल गोइंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू फार्मर ऑफ द ईयर. दैट इज आवर हम्प्टी शर्मा फ्रॉम हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया. What do you say? Good investment? He thinks it is. सारे के सारे तो हम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के पीछे पड़े हैं अभी. जो भी बना ले, हम ट्राई तो जरूर करेंगे.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care, urgent care services ke साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
5: तारा वो तारा हर तारा
3: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
6: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
6: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
7: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
6: सच में सब संभालेंगे
7: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
8: फ्लोर्स क्लीन
9: चेक
8: विंडोज क्लीन
9: चेक
8: किचन क्लीन
9: चेक
8: एयर डक्ट्स क्लीन
9: वेट एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है
10: बिल्कुल जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
13: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
15: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
15: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट